शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उसे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

इस त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए आप और हम सब मिलकर एक वचन ये भी देते हैं कि हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, महिलाओं का सम्मान करें। तब होगा असल मायने में रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ. भाई, जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है. और यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज आप अपनी सेहत का ख्याल रखें. चूंकि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है तो जाहिर सी बात यह है कि हम समुदाय से लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं, उनकी बातें हम जन जन तक पहुंचाते हैं. अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, या कुछ गाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, या कुछ और, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में मैंने एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है जो कि पेशे से वकील हैं, लेकिन वो अच्छा गाते हैं, गुनगुनाते हैं. तो किस तरीके से इस माहौल में, यानी कि वकालत को वो बैलेंस रखते हैं और अपने सिंगिंग का जो क्षेत्र है उसमें भी वो लगातार काम करते आ रहे हैं, तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा. मेरे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं. आप गामा 2 ग्रेटर नोएडा में रहते हैं. तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है.
4: थैंक यू सर. गगन जी, थैंक्स अ लॉट.
3: काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मैं ये भी अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि पहले हमारी फोनिक बात हुई और उसके बाद हमें समय नहीं मिल पाया, लेकिन ये सच है कि इंसान जब कोशिश करता है तो वो कोशिशें कहीं ना कहीं कामयाब हो जाती हैं. तो एक बार पुनः आप सबका, आपकी फैमिली भी यहाँ आई हुई है, तो इसलिए मैं सबका यहाँ जिक्र कर रहा हूँ. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका.
4: थैंक यू गगन जी.
3: तो नरेंद्र सर, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपका फील्ड है, आप पेशे से लॉयर हैं और सिंगिंग आप बाय प्रोफेशनली गाते हैं या बस शौकिया गाते हैं, या यूं कहें कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को.
4: थैंक यू सर. आई एम सिंगिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 6-7 इन डॉक्टर एम एल शर्मा मॉन्टेसरी स्कूल, सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर. मेरे पिता, जो कि स्वर्गीय राज कपूर और स्वर्गीय दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन थे, तो वो उस दौरान कैसेट्स लेके आते थे. आन आवारा, जिस देश में गंगा बहती है, उस दौरान उनकी फेवरेट मूवीज रही हैं, देखते आए हैं. उस समय हमारे यहाँ टेप रिकॉर्डर होता था सर
3: जी,
4: तो मैं स्वर्गीय मुकेश जी व रफी साहब के गाने, किशोर दा के गाने सुनकर बड़ा हुआ सर. थोड़ा बड़ा हुआ तो 10th क्लास के दौरान MS इंटर कॉलेज सिकंदराबाद में NCC ज्वाइन की. 11th में NCC में सीनियर अंडर ऑफिसर रहते हुए आई हैव गॉट मैनी अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज. अटेंडेड ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन हेल्ड एट सापुतारा गुजरात एंड गॉट बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन इन 1993
3: जी.
4: एंड ऑल्सो बी सर्टिफिकेट ऑफ NCC 94 में ऑल इंडिया ट्रैकिंग एक्सपेडिशन में बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग एंड ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन में एंड अवार्डेड बाई कर्नल एसन थ्रॉड, जो उस समय वहाँ ट्रैक मैनेजर थे. इट वॉज नेशनल लेवल का ये
3: कॉम्पिटिशन था
4: सर.
3: तो यू कह सकते हैं कि इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत हुई.
4: यस सर.
3: ये आपको विरासत में मिला है.
4: Yes,
3: क्योंकि
4: sir,
3: आपके फादर भी म्यूजिक का शौक रखा करते थे. yes, उस तरीके से फिर आपको गाने का मौका मिला. जहां पर भी आपको मौका मिला वहां आपने चौका मारा.

0: जी जी,
1: जैसा कि नाम में ही है ऑल इंडिया ट्रैक 1994, आई गॉट एनसीसी सी सर्टिफिकेट एज सीनियर अंडर ऑफिसर इन बी ग्रेड. ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉलेज में हर नेशनल फेस्टिवल पर 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो
0: आप गाते थे?
1: नहीं सर, देशभक्ति के गीत. और डिग्री कॉलेज में 95 में जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते वहाँ मेरी परफॉर्मेंस सर जरूर रहती.
0: ओके ओके ओके, तो मतलब ये तो स्कूल कॉलेज की बात रही
1: सर,
0: तो इस तरीके से वहाँ से आपकी शुरुआत रही. उसके बाद
1: फिर संगम में सर मैं फर्स्ट प्राइज जीता 96-97 में, अग्रसेन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया. उस समय शिक्षा मंत्री थे हमारे यहाँ नरेंद्र कुमार गौर, वो मुझे प्राइज उन्होंने मुझे दिया था सर.
0: जी जी.
1: और 2001 में नीलम रिकॉर्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से मेरा फर्स्ट एल्बम सर रिलीज हुआ.
0: ओ ग्रेट.
1: ये दिल मांगे मोर,
0: तो
1: जैसा कि टाइटल है ये दिल मांगे मोर,
0: उसमें

0: दार, ये उसी गाने
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपकी एक शुरुआत रही, राइट?
0: ये एल्बम काफी सेल हुआ उस दौरान यूके एंड पाकिस्तान।
1: अच्छा, ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब यूट्यूब पे अगर लोग आज भी सर्च करें तो वो डेटा आपका मिल जाएगा।
0: मिल जाएगा।
1: वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद फिर शुरुआत क्या रही?
0: बेदर्द सनम मेरा एक एल्बम आया, काफी वो भी काफी चला था। इस दौरान स्टेज परफॉर्मेंस चलती रही। 2002 में ग्रेटर नोएडा आया, प्राधिकरण सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम स्टार्ट किया सर। 2004 में ग्रेटर नोएडा कार्निवल गायन में आई गॉट फर्स्ट प्राइज सर।
1: ओ ग्रेट।
0: उस समय ब्रजेश कुमार जी मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ थे, जो कि सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं। और 2006 में कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली इंटर कॉमेट 2006 के नाम से मिस्टर ब्रायन मलिगन जो तब की नोट स्पीकर थे
1: जी
0: और क्रिएटर हैं मलिगन कॉन्सेप्ट के वर्ल्ड में
1: जी,
0: ही इज अ न्यूजीलैंडर। गाना सुनकर सर वो बहुत खुश हुए, मुझे स्टेज पर बुलाया और गले लगाया, जिसको डॉक्टर्स मिलने में पूरी लाइफ निकल जाती है फिजियोथेरेपी को लेकर के। वो क्रिएटर हैं बिकॉज वो मलिगन कॉन्सेप्ट के नॉन इन्वेसिव है।
1: मतलब वो एक खुशी का लम्हा था आपके लिए।
0: यस सर, मेरे लिए
1: वो किसी अवार्ड से कम नहीं था।
0: अवार्ड से कम नहीं।
1: तो मतलब इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत होती रही।
0: यस सर।
1: आप गायन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते रहे, अवार्ड आपको मिला, लोगों ने उस काम को सराहा। तो उसके बाद की अगर मैं
0: और सर मैं बीच में
1: जी जी
0: कहना चाहूंगा
1: जी,
0: इस हिंदी इंग्लिश पैरोडी सॉन्ग पर बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी सर।
1: कौन सा गुनगुनाएंगे आप हमारे श्रोताओं के लिए?
0: Definitely sir. In collaboration by Capri Institute of Manual Therapy Delhi and SPSPG Institute Dehradun ने संयुक्त रूप से सर इसको आयोजित किया था
1: जी।
0: श्रोताओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट ओनली दे दे ओवर प्रेशर। ये ट्रीटमेंट का एक पैटर्न है जो मोलिगन कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है, सिखाता है सब डॉक्टर्स को। ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट ओनली दे दे ओवर प्रेशर बैठी।

0: it should be sustained.
1: क्या
0: बात? Follow the treatment plan. Back the movement plan.
2: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. चलिए, ये जो बातों का सिलसिला है मिस्टर नरेंद्र, आपके साथ हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि आज आपसे आप ही की बात हो रही है, आपकी फील्ड की बात हो रही है. और ये तो एक शुरुआत रही कि जिस तरीके से आपने सिंगिंग के क्षेत्र में कब कदम रखा, कब अपने आप को आप आगे लेकर गए और क्या चल रहा है, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे जरूर. यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप ही के अंदाज में हम म्यूजिकल ब्रेक की ओर चलें. कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो अक्सर आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हमारे श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहते हो.

0: मत कहो।
1: चलिए सर, इस गाने को हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। वाकई बहुत अच्छे गाने का आपने चुनाव किया है और इस गाने में बहुत अच्छा एक संदेश भी छुपा हुआ है। तो यही गाना लिसनर्स हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनशादा 90.8 FM पर, ये गाना आप सुनिए, गाइए, गुनगुनाइए और उसके बाद झट से फट से जुड़ जाएगा सुनशादा 90.8 FM पर। मैं हूं गगन और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं पेशे से सिंगर हैं और जिनका नाम है नरेंद्र कुमार सिंह। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनशादा 90.8 FM।
2: नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो,

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। जिस तरीके से इन्होंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक गाना हमारे लिए नजर किया, हमारे लिए गुनगुनाया, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरी आदत है। तो एक बार फिर से नरेंद्र जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: ये जो गाने जब आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, वो वाकई दिल को सुकून देते हैं। ये गाने, इसमें एक मीनिंग है, कहीं संदेश छुपा हुआ है। तो क्या लगता है कि आज के समय में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं?
1: यस सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे डीप ब्रीथ जैसा फील होता है, प्राणायाम
0: ग्रेट
1: जैसा फील होता है। मेरा पैशन भी है, शौक भी है, प्रोफेशन भी है। तो इस बीच वन इंडिया में गाने का मौका मिला, 2015 की बात है सर। और टाइम टू टाइम बीच में फिर अधिवक्ता दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अक्सर होली के आयोजनों में मेरा
0: गाने का मौका मिलता रहा।
1: जज वगैरह जो बीच बीच में रहे, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी एवं डिस्ट्रिक्ट जज श्री अभय कुमार जी,
0: मतलब इस तरीके से आपको मौके मिलते रहे।
1: कोई भी वेलकम पार्टी है, कुछ भी है,
0: ओके ग्रेट ग्रेट।
1: कप्तान साहब, उधर डीआईजी साहब, ये सब
0: मतलब प्रशासन के बीच में आप जाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। घर की अगर मैं बात करूं तो घर में किस तरीके से माहौल रहा, ये आपने हमें बताया फादर के बारे में। कभी सपोर्ट मिला, या कभी ऐसा होता है कि पुराने समय की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का समय अगर हम देखें सर, तो आज तो लोग जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो खुद उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप गाने के लिए ट्रेनिंग लीजिए, या एक म्यूजिक का गुरु हो आपके पास होना चाहिए। तो आपको घर से कैसा माहौल मिला, कितना सपोर्ट मिला सिंगिंग के क्षेत्र में, या बस आप सिंगिंग छोड़िए आपके बस की बात नहीं है?
1: हमारे कैसा रहा? ऐसा नहीं था सर। हमारे टाइम में हमारे फादर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते थे, और गाना उनको मतलब गाने के मामले में टू बी फ्रेंक में कहना चाहूंगा, वो बिल्कुल भी
0: सपोर्ट नहीं थे। क्योंकि पुराने समय में होता नहीं था, आज के समय में तो बहुत सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स बच्चों को।
1: मेरी मदर हालांकि मुझे सपोर्ट करती थी, और इसी दौरान जहाँ जहाँ मैं सीखने भी गया तो वहां से मुझे गुरुओं से बहुत प्रेरणा मिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और 10-12 इयर्स में हारमोनियम पे रियाज किया, 2002-2010 ये सब रियाज हुआ। उससे पहले भी मेरा चल रहा था हारमोनियम वगैरह, और मेरे कई गुरु रहे हैं, नारायण मास्टर जी रहे हैं इधर फिर, और गुरुओं का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, बल्कि कॉम्प्लीमेंट बहुत मिले कि हमारा ऐसा कोई शिष्य भी
0: really nice.
1: इस तरह
0: क्या कभी दिमाग में नहीं आया कि मुझे बॉलीवुड का रुख करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या कुछ घर की ऐसी परिस्थितियां रहीं कि जिसकी वजह से आप आगे जाने का मौका आपको नहीं मिला?
1: परिस्थितियां रही, हालांकि जब मैं ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन सापुतारा में था, तो ब्रिगेडियर साहब मुझे सुन करके बोले, नरेंद्र कहां तुम्हें तो रेडियो में होना चाहिए।
0: और आज आप रेडियो पर हैं। कह सकते हैं कपिल शर्मा जिस तरीके से पूछते हैं, क्या आपने सोचा था कि गगन के सामने आप बैठे होंगे कभी?
1: नहीं सोचा था।
0: जी
1: कर्नल साहब मिस्टर एस एन थ्रॉट 92 में मुझसे बोले थे, इस दौरान जहां जहां मैं परफॉर्म किया, स्टेज पे मैं रहा हूँ अक्सर, फ्लावर शो ग्रेटर नोएडा, इधर फाउंडेशन डे दिसंबर में होता है ग्रेटर नोएडा का, अब कार्निवल होता है उसमें, फिर एज ए जज भी रहा हूँ, एज ए बीच भी फिलर भी रहा हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस देता रहा हूँ, तो काफी
0: एप्रिसिएशन
1: मिली।
0: चलिए सर, ये
1: भोजपुरी के मुझे ऑफर थे दो।
0: अच्छा अच्छा।
1: फिल्म का भी ऑफर था, एल एच खान साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार जी को लेकर के, वो लिरिक्स उन्होंने लिखे थे, उन्होंने मुझे कई बार दिल्ली जब यहाँ आते थे तो मैं मिलता था अक्सर उनसे, और अपॉर्चुनिटी थी, बट फैमिली का भी थोड़ा मुझे था, अपने आप को स्टैंड भी करना था।
0: यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बातें जो जारी हैं लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि बातें थोड़ी ज्यादा सी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आप ही की पसंद का एक और गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जो आप हमारे लिसनर्स को सुनवाना चाहते हैं, और उसके बाद इस बात को हम कंटिन्यू आगे करेंगे।
1: नील नील अंबर पर चांद जब आए,
0: क्या बात है,

बहुत ही खूबसूरत गाना आपने चुना है यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं यकीनन इस गाने को गाएंगे, गुनगुनाएंगे, अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी गाते झूमते मतलब अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। और ये फिल्म जो है कलाकार फिल्म है, और नीले नीले अंबर पर वाकई बहुत अच्छे बोल है, किशोर कुमार साहब ने इस गाने को गाया है और इंदीवर साहब का लिरिक्स है, और साथ ही साथ मनोज कुमार के जो बेटे हैं उस फिल्म में वो एक लीड एक्टर में रहे, साथ ही साथ यूं कहें कि श्रीदेवी, और मतलब कंप्लीट एक पैकेज है। बहुत ही खूबसूरत गाना है सर, मेरे दिल के बेहद करीब ये गाना है। बस लिसनर्स इस गाने को गाइए, गुनगुनाइए, सुनिए, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे यहीं, कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ आज खास मेहमान हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं लेकिन बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और कई एल्बम्स में इन्होंने काम किया है। खुद की एल्बम भी इन्होंने रिलीज की है,
1: ये दिल मांगे मोर,
0: बेदर्द सनम, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद कुछ जो लिसनर्स हैं जरूर आपको फाइंड आउट करेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें आपसे हो रही थी कि अच्छी जगह आपको मौका भी मिला लेकिन घर की कुछ परिस्थितियों की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाए। तो इस समय की अगर मैं बात करूं, जो कहीं ना कहीं ख्वाब था वो जो दबा हुआ था उस वक्त, अगर आज आपके सामने मौके आते हैं तो कितना उसको आप कैश कर पाते हैं, कितना आप उसको भुना पाते हैं, या कहीं सोचा है कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, मुंबई की ओर रुख करना चाहिए?
1: अभी मेरा ये कंटिन्यू है म्यूजिक, और मेरा फेसबुक पेज मैं अभी बनाया हुआ हूँ तो उसमें लाइव मैं सैटरडे संडे आता रहा हूँ।
0: ग्रेट।
1: और कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो स्टेज परफॉर्मेंस मिलती हैं मैं उसको उनको करता रहा हूँ
0: जी।
1: और फैमिली के कुछ कारणों की वजह से बीच में मैं गैप हो गया था मेरा इसमें, तो मुझे अपने आप को स्टैंड करना था। आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ तो
0: ओके
1: मैं इसको कंटिन्यू करूंगा सर।
0: वेरी गुड, वेरी गुड सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कितना तालमेल बैठा पाते हैं वकालत करते वक्त, या यूं कहें कि आपका जो पेशा है, आप पेशे से वकील हैं और सिंगिंग के क्षेत्र में भी आप समय देते हैं और आप जैसे खुद कह रहे हैं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा यकीनन मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये जो तालमेल है बैलेंस कैसे रख पाते हैं साथ साथ फैमिली भी?
1: बेसिकली मेरा रहता है सर, जो हमारा प्रॉपर्टी एक्ट है, आई एम नॉट ए लॉयर, आई एम नॉट ए क्रिमिनल एंड सिविल एडवोकेट। बेसिकली हमारा डीड्स का काम होता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क होता है, तो उसमें मेरे पास टाइम है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। कई बार हमारे एलओटी भी जब पता उनको चलता है कि मैं सिंगर भी हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्क भी देखता हूँ, डीलिंग भी मेरा व्यवसाय है थोड़ा बहुत, तो कहते हैं नरेंद्र जी क्या क्या हैं आप,
0: हरफन मौला है, तो, हाँ, शायद ही कोई तो फील्ड आपका बचा हो।
1: अच्छा गाते हैं
0: जी,
1: ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं सब ये मैनेज
0: कर लेता हूँ,
1: इसमें 10 to 5 का मेरा कोई कंपलसरी जॉब नहीं है।
0: ओके ग्रेट। फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है? फैमिली में मैं बात कर रहा हूँ आपकी वाइफ का, बच्चों को तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, बच्चे बड़े ट्रस्ट के साथ आए हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके असिस्टेंट बने हुए हैं, कोई अनन्या को मैं देख रहा हूँ ये वीडियो बना रही हैं, और ये जो आपके छोटे सुपुत्र हैं इन्होंने अभी आपका टेक्निकल वाला पार्ट हमें यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने असिस्ट किया, तो किस तरीके से माहौल मिलता है, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपकी फैमिली?
1: सपोर्ट करते हैं लाइव में, मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, बैकग्राउंड देना, साउंड सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, ट्रैक प्ले करना, ट्रैक सेलेक्ट करना, यूट्यूब से ट्रैक को सेलेक्ट करना, तो जो मुझे गाना होता है जो उस दिन मैं डिसाइड करता हूँ उन सबको वो डाउनलोड करके रखते हैं एंड देन फाइनली मैं उस पर गाता हूँ, तो इन लोगों की काफ़ी सपोर्ट रहती है। एंड वीडियो शूट करना, बीच बीच में वहाँ का एनवायरनमेंट देना उस तरह का लाइव का।
0: ओके okay. और मैडम क्या सपोर्ट करती
1: है? मैडम की भी सपोर्ट मुझे रहती है,
0: तभी आप बाहर निकल पाते हैं। जी छोड़ो गाना बजाना है, अब तो उम्र निकल गई मियां आपकी। चलिए मैं बच्चों के बारे में जान लेता हूँ। अनन्या आप मुझे बताइए कैसा लगता है जब आप पापा को सपोर्ट करती हैं या पापा के साथ आप जाती हैं, क्या लगता है कि पापा को और आगे जाना चाहिए या आपको लगता है कि मुझे भी सिंगर बनना है?
2: हाँ जी अंकल, कई बारी होता है कि लाइक पापा एज अ जज होते हैं तो मैं जाती हूँ मोस्टली साथ में, या भाई चला जाता है वीडियो शूट या उनकी हेल्प के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से, लाइक उनकी लाइव परफॉर्मेंस होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है फेसबुक पे, तो भाई हेल्प करता है, मैं वीडियो शूटिंग में कभी कभी हेल्प करती हूँ।
0: ओके
2: हाँ, तो अच्छा लगता है ऑफ कोर्स।
0: अच्छा
2: हाँ।
0: तो क्या कभी दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है, मुझे भी चुनाव करना है? अभी स्टडी किस क्लास के स्टूडेंट है?
2: अभी 10th.
0: अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा शारदा यूनिवर्सिटी का मास कॉम का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है. आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम जैसा टैलेंट भरा हुआ है. मास कॉम का रेडियो भी है, टीवी भी है. अगर आपको कभी लगता है तो जरूर, मैं तो कहूंगा कि एक बार जरूर यहाँ विजिट करेगा, यहाँ का माहौल देखेगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली कि लोग देख ही रहे हैं. और फैकल्टी से आप मिलिए, लोगों से मिलेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ के बहुत अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं. तो मैं तो इस बात से यही कहूंगा कि आप जरूर सोचिएगा जरूर अगर आप पापा के साथ आते जाते, क्योंकि एक नो डाउट कि चकाचौंध की दुनिया है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, समझने को मिलता है. फिर लगता है कि नहीं यार, इसका एक कोर्स कर ही लिया जाए तो उसके बाद हम कुछ जरूर करेंगे, खास करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम सुन रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में जेवर की तरफ हमें फिल्म सिटी मिलने जा रही है. आपके छोटे भाई भी आए हुए हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा. क्या नाम है आपका?
3: माय नेम इज आर्यन.
0: आर्यन, आर्यन मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है पापा के साथ जब आप जाते हैं या जबरदस्ती ले जाते हैं आर्यन को? नहीं पापा, मेरा मन नहीं है, मेरे को तो क्रिकेट खेलना है. कहाँ ले जाते हैं आप?
3: नहीं अंकल, पापा बहुत अच्छे हैं.
0: बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड.
3: सपोर्ट करने में अच्छा लगता है.
0: आप पापा को सपोर्ट करने में अच्छा लगता है या पापा का सपोर्ट आपको अच्छा लगता है? दोनों को अच्छा लगता है. मम्मा के बारे में बताइए थोड़ा.
3: मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती हैं पापा को.
0: चलिए, वेरी गुड सर, बहुत अच्छी फैमिली है आपकी. मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. यहाँ पर एक मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा और उसके बाद आखिर में एक छोटा सा संदेश आपसे जरूर लूंगा. तो कौन सा एक गाना है जो आपके और दिल के बेहद करीब है, जो हमारे लिसनर्स को आप सुनाना चाहते
1: हैं? बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और इस दौरान तो क्या कहते हैं टाइम पर कुछ सिलेक्शन.
0: कोई बात नहीं, जो भी. हाँ प्लीज सुनाइए.
1: एक मैं रफी साहब का दो लाइन गुनगुना रहा हूँ.

0: जिंदगी
1: क्या बात,
0: कल हम कहां तुम कहां।
1: बहुत ही खूबसूरत गाना लिसनर्स, मैं आपके लिए नजर करने जा रहा हूं। आनंद बख्शी साहब के बोल, म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, सिंगर जिस तरीके से सर ने हमें बताया रफी साहब और साथ साथ आर डी बर्मन, और स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो रिश्ते में तो हाँ अमिताभ बच्चन साहब और शान फिल्म ये रही 1980 में आई, और गाने के जो बोल हैं यम्मा यम्मा, ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको उस प्रोग्राम को सुनकर मजा आ रहा होगा, तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। फिलहाल ये गाना सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है। कहते हैं कि ईश्वर से जब आप कुछ मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले यही मांगेगा, जो पहला सुख है वो है निरोगी काया। जब आप हेल्दी रहते हैं तो आप गाना अच्छा गा सकते हैं, दूसरा काम बेहतर कर सकते हैं, किसी काम को खूबसूरत अंजाम तक आप पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र कुमार सिंह, जो कि बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इनके बारे में और इनकी फैमिली के बारे में, इनके इस पेशे के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि रियलिटी शोज बहुत आ रहे हैं, लोग अपने आप को वहाँ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। और ख़ासकर अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों का जो एक यूँ कहें कि कंपटीशन है, लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं हताशा भी है, परेशानियां भी हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता। तो इस करंट सिनेरियो को किस तरीके से आप देखते हैं और इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं?
1: बच्चों को डेफिनेटली आई वुड लाइक कि मैं भेजना चाहूँगा, और कॉम्पटिशन काफ़ी ज़्यादा है आज की डेट में, और कंपटीशन होना भी चाहिए, और बच्चे प्रिपेयर करें उस हिसाब से आगे बढ़ें, और कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। अपना जो शौक है उसको बनाए रखें एंड कंपटीशन से ना डरें। यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। इफ यू आर स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है।
0: क्या बात है। सो कहने का आशय लिसनर्स यही है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं या आप ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं तो डरने घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहते हैं ना कि हिम्मत

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत।
1: याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दिस इज फॉर यू ऑल फ्रेंड्स।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मिस्टर नरेंद्र। लिसनर्स, इस गाने के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, इजाजत लेता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नरेंद्र कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें, अपने मन की बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई।
1: थैंक्स अ लॉट।
0: सो फाइनली, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 एफ।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर, Sharda University।

इस त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए आप और हम सब मिलकर एक वचन ये भी देते हैं कि हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, महिलाओं का सम्मान करें। तब होगा असल मायने में रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने से खास प्रोग्राम के माध्यम से। आज जिस सब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूं वो इशारा करता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि हम बात करेंगे, हिंदी में कहा जाता है साइबर धोखाधड़ी और अंग्रेजी में कहा जाता है साइबर फ्रॉड। इससे कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें, इससे अगर आपने अपने आप को बचा कर रख लिया तो यकीन मानिए कि रात को चादर तान कर आप सो सकते हैं, अदरवाइज रातों की नींद आपकी खराब हो सकती है। इसी के बारे में बातें करेंगे। डिजिटल माध्यमों, जैसे कि बात निकल कर सामने आती है कि इंटरनेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करके की जाने वाली धोखाधड़ी है साइबर फ्रॉड, और जिसका उद्देश्य ये होता है कि पीड़ितों की निजी जानकारी को चुराना या उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है। इसके बारे में डिटेल में और बातें करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू थ्रू शारदा 90.8 FM। आज का सब्जेक्ट है साइबर

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि साइबर धोखाधड़ी के प्रति जन जागरूकता अभियान हम चलाते रहें, हम आपको अपडेट करते रहें। यही वजह है कि इस प्रकार के जो घोटाले, इस प्रकार का जो फ्रॉड है, उससे बचने बचाने के लिए हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो बात निकल कर ये सामने आती है कि धोखाधड़ी के मामले बड़े पैमाने पर हमारे सामने आ रहे हैं और भारत सरकार भी अलर्ट है। इसीलिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ मिलकर हम आप तक ये खास बातें पहुंचा रहे हैं। इस साइबर धोखाधड़ियों की जो बढ़ती घटनाएं हैं, उनका असर नागरिकों पर पड़ता है। उनके साथ धोखा होता है, उनके साथ छल होता है, उनके साथ फरेब होता है। और इस बुरे असर से बचने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव किया गया है, यानी कि अवेयरनेस एक्टिविटी सुरों शादा 90.8 FM के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और चूंकि रेडियो स्टेशन का जो एक दायरा है, यानी कि आपका हमारा जो एक संबंध है, हम लोगों तक पहुंचते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बीच में पहुंचते हैं, अर्ध शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, तो यानी कि एक ब्रिज का काम हम कर रहे हैं। और यही वजह है कि सुनो शारदा 90.8 FM आपसे कहता है कि इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, इससे आप अपने आप को बचा कर रखें ताकि आप सुरक्षित रह पाएंगे और आपके रुपए का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरियानी गगन के साथ। आज मैं बात कर रहा हूँ साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर धोखाधड़ी से कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें। और इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले डिटेल निकल कर ये सामने आती है कि जो धोखेबाज लोग हैं, जिस तरीके का काम करते हैं, वो आर्थिक नुकसान आपको पहुंचाते हैं। और कई प्रकार की एक ठगी होती है, जैसे फिशिंग। इसके अंतर्गत होता क्या है कि फर्जी ईमेल या मैसेज भेजकर बैंक विवरण या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी मांगना। दूसरी बात सामने आती है विशिंग और स्मिशिंग, यानी कि फोन कॉल जिसको विशिंग और SMS इसको स्मिशिंग के जरिए बैंक अधिकारी बनकर OTP या कार्ड की जानकारी वो लोग चुराते हैं, वो आपसे मांगते हैं। लेकिन जो भोले भाले लोग होते हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं। और पहचान की चोरी यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की निजी जानकारी जैसे कि नाम आधार नंबर चुराकर उनके नाम पर फर्जी अकाउंट खोलना या लोन लेना। रैंसमवेयर यानी कि कंप्यूटर की फाइलों को लॉक यानी कि एनक्रिप्ट कर देना और उन्हें खोलने के बदले पैसे यानी कि फिरौती की मांग करना। इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये भी एक प्रकार का स्कैम है, यानी कि शेयर ट्रेडिंग या पैसे दोगुने करने का लालच देकर लोगों को निवेश के लिए उकसाना। और हाल ही में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो इस प्रकार की ठगी से आप अपने आप को बचा कर रखें। सिम स्वैप यानी कि धोखे से नया सिम कार्ड निकलवाकर बैंक खातों के OTP प्राप्त करना। तो बहुत सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए, तो आपका फर्ज बनता है कि साइबर ठगी से, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। और ये काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर ये खास बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM के जरिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी. आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर धोखाधड़ी के बारे में. इससे बचने के तमाम उपाय हैं, कौन कौन से वो टाइप्स, उसके बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ. सोशल मीडिया पर नकली विज्ञापन और वीडियो घोटालेबाज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्टिव एड वो लोग चलाते हैं, या यूं कहें कि आकर्षक विज्ञापन वो चलाते हैं. अक्सर मशहूर हस्तियों, सरकारी अधिकारियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री के नकली या एडिट किए हुए वीडियो का इस्तेमाल वो लोग करते हैं और ये वीडियो शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोने में निवेश के लिए पक्के रिटर्न या गुप्त तरीकों का वादा करते हैं और कोई भी सरकारी संस्था या मशहूर हस्ती व्यक्तिगत निवेश की सलाह नहीं देती है और ना ही मुनाफे की गारंटी देती है. तो इस बात का ध्यान रखें, अलर्ट रहें और इस प्रकार की साइबर ठगी से, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें. और भी अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा. बस यही कहूंगा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी. ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM.

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
3: शारदा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। साइबर ठगी से अपने आप को बचा कर रखिए, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, यही उद्देश्य इस प्रोग्राम का। भारत सरकार के साथ मिलकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात निकल कर अब ये सामने आती है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम यानी कि ट्रेंडिंग ग्रुप्स, लोगों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में लोगों को जोड़ा जाता है और वादे किए जाते हैं कि मुफ्त ट्रेनिंग टिप्स, सेबी से रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स आपको पक्का मुनाफा देने की गारंटी देते हैं। और इन ग्रुप्स के अंदर फर्जी सदस्य बड़े मुनाफे के स्क्रीन शॉट्स वो लोग शेयर करते हैं। पीड़ितों को धीरे धीरे निवेश करने के लिए राजी किया जाता है। भरोसा बनने में कई दिन या हफ्ते वो लोग लगाते हैं, यानी कि आपके ऊपर काम करते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं। और असलियत ग्रुप के ज्यादातर सदस्य भी इस घोटाले का हिस्सा होते हैं। ये जो जानकारी है भारत सरकार के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस प्रकार की ठगी में ना फंसे, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को दूर रखें। ऐसे अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। ऑनलाइन दोस्ती एक इन्वेस्टमेंट ट्रैप बन जाती है दोस्तों। स्कैमर सोशल मीडिया डेटिंग एप्स पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रेगुलर आपसे चैट करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको सामने वाला दोस्त मेरा ही सच्चा दोस्त है, लेकिन इमोशनल भरोसा वो लोग बनाते हैं, भरोसा वो जीतते हैं और कुछ समय के बाद वो इन्वेस्टमेंट के मौके बताते हैं। और एक अलर्ट मैसेज यानी कि चेतावनी का संकेत ये होता है कि कोई भी ऑनलाइन अजनबी जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जोर दे, वो एक बड़ा रेड फ्लैग है, एक रेड अलर्ट है, वहीं आप अलर्ट हो जाइए। और बात करें तो फर्जी ऐप

कर रहे हैं वो विषय साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, ऐसे धोखेबाजों से अपने आप को बचा कर रखिए। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ठगी से कैसे अपने आप को बचा कर रखें। सुरक्षा से जुड़ी हुई जरूरी सलाह मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सोशल मीडिया विज्ञापनों या अनजान लोगों से मिले निवेश की सलाह पर कभी आप लोग भरोसा ना करें, यकीन बिल्कुल भी ना करें। अनजान लिंक या एपेक फाइलों से कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। आधिकारिक स्रोतों पर सेबी रजिस्ट्रेशन की पुष्टि आप करें। cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें या 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। और फिर डिजिटल अरेस्ट स्कैम की पूरी जानकारी, यानी कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक तरह का धोखा है, धोखाधड़ी है। इसके अंतर्गत बात निकल कर ये सामने आती है कि इसमें जो अपराधी है वो फोन कॉल या वीडियो कॉल पर पुलिस या सरकारी अधिकारी होने का दिखावा करके लोगों को डराने का वो काम करते हैं, और वो पीड़ित को बताते हैं कि उनके खिलाफ कोई गंभीर अपराध दर्ज किया गया है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी या अवैध सिम कार्ड का इस्तेमाल। स्कैमर कहता है कि आपसे पूछताछ की जाएगी, जिसका मतलब है कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते और ना ही कॉल कट कर सकते हैं, और पीड़ितों को कई घंटों या यूं कहें कि कई दिनों तक कॉल पर ही उलझाए रखते हैं ताकि उनके मन में डर और घबराहट पैदा हो जाए। कभी कभी वो वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहनते हैं या असली दिखने के लिए नकली पहचान पत्र या यूं कहें कि आईडी कार्ड्स वो लोग दिखाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि तुरंत पुलिस को सूचित करें, और जो नंबर मैंने आपको बताया 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं या इसके अलावा cybercrime.gov.in पर आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसे अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सोनो शारदा 90.8 FM। म्यूजिक, देसी ट्रैप, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर सिमरन कौर टडली, टाइटल दिलबर जानी, लेट्स लिसन टू इट ओनली ऑन सोनो शारदा 90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय साइबर फ्रॉड। धोखाधड़ी से अपने आप को बचा कर रखिए। इस प्रकार के जो फ्रॉडर हैं, जो धोखेबाज हैं, वो एक व्यक्ति को अगर पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, या वो पीड़ित व्यक्ति इनके झांसे में आ जाता है, तो उनसे पैसे के लेन देन की जांच करवाने के लिए या मामले को चुप या रफा दफा करने के लिए पैसे की डिमांड करने लगते हैं। और आमतौर पर होता क्या है कि बैंक ट्रांसफर, यूपीआई या क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो रुपया मांगते हैं। पैसे मिलते ही जालसाज लोग गायब हो जाते हैं। और भारत में डिजिटल अरेस्ट यानी कि डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। बस आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और पुलिस कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस कभी भी किसी मामले को बंद करने के लिए पैसे नहीं मांगती। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो तुरंत फोन काट दें। अपनी कोई भी निजी जानकारी आप साझा ना करें। अगर आप किसी साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो फिर मैं दोहराता हूं, 1930 पर आप कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उन लोगों का हथियार ये है, डर उनका हथियार है, जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। तो बहुत सारी अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचा दी, बस फर्ज आपका बनता है कि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। और एक लाइन हमेशा याद आती है जो अक्सर हमने सुनी है, देखी है, पढ़ी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सुनते रहिए ऐसी अपडेट के लिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

इस त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए आप और हम सब मिलकर एक वचन ये भी देते हैं कि हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, महिलाओं का सम्मान करें। तब होगा असल मायने में रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में आते रहते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नई है, कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं है, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है और कहीं कोई WhatsApp पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ है हमारी अपनी टीकन देवी जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती है और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है इस पर जागरूकता बेहद जरूरी है और मैं तो यही कहूंगी कि किसी भी नई दवाई या तकनीक या सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर के बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आज हम HPV वैक्सीन पर चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है, उनके भविष्य की चिंता होती है, उनके शरीर की चिंता होती है। पर यहाँ दिक्कत यह है कि लोग अपने घरों में डर का माहौल बना लेते हैं और डर को पकड़कर बैठ जाते हैं या किसी भी अफवाह पर विश्वास कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, क्या सही है, इन सभी बातों के बीच एक सच छिपा रह जाता है। आज हम उसी सच को बाहर लाएंगे। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। हम स्मार्ट के साथ मिलकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, सेहत सही लाभ कही, जिसमें आज हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो डर और चिंता का विषय बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हम अपने श्रोताओं को जागरूक करें क्योंकि हमारे रेडियो स्टेशन का यही उद्देश्य है कि हम समुदाय को अवेयर करें और उन तक सबसे जरूरी और अहम जानकारी पहुंचाएं।
0: बिल्कुल सही कहा टीकन देवी जी आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है, माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुन कर जमा हुई है, उस घर में आपको ले चलता हूँ।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उनके घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई और बस यह कागज पकड़ा कर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। यह कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी, तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश के जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं हो पाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुमसे बात कर लूं और इस विषय के बारे में तुम्हें थोड़ा बता दूं।
2: अरे भाभी, यह HPV या जो भी नाम दिया इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से ना जाने कितने तो मरीज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं, तो कोई कह रहा है सरकारी टीका है लगवा दो, कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या सर हो। अब तो बैठते इतनी चिंता होती है, कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं, कोई कह रहा है बांझ हो जाएंगी बेटियां, किसकी सुनूं, यहाँ तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा है क्या?
2: देखा, सफेद कोट पहने एक औरत बोल रही थी, मेरे क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए, अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़ी हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में से है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है। ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूँ, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, यह भी मन में आता है। ऊपर से यह सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं, कोई कह रहा है ये जल्दबाजी है।
1: देखो सुनीता, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना भी बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब तो क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन दी जा रही है, उसकी एक ही डोज प्रभावी मानी गई है, यानी उसके अलावा कोई डोज लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई हवा में नहीं फैलती है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद यह नीति बनी है। और यह वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इसको निगरानी के बाद ही सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है। यानी एचपीवी वैक्सीन के बारे में सही जानकारी बेहद जरूरी है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और इसकी एक डोज ही प्रभावी है, यही हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं।
2: पर देखो ना, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी को आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कहीं दिक्कत ना हो जाए।
1: ये सब सिर्फ अफवाह है जो ज्यादा फैल रही है, पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेश में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बाझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली है उनकी भी गवाही है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली तो कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वह माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रांति है।
0: बिल्कुल सही कहा टीकन देवी जी आपने, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है और यही सेहत सही लाभ कई की ताकत है। मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्म को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी यह सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात बिल्कुल मिथ है, अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक सामग्री सभी एक ही बात कह रहे हैं तो फिर हम सोशल मीडिया की बात क्यों माने, क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें बहुत जल्दी भ्रामक और गलत फैलाई जाती हैं।
2: इसीलिए सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है और सच धीरे धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जिससे उसे रोका जा सकता है?
0: टीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। एचपीवी संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: हाँ सुनीता जी, ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी भी, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज, लेकिन यह वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी कि बिल्कुल मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों के साथ बार बार कहा गया है कि सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ बिल्कुल, ये बात सच है। आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जहां व्यवस्था हो वहां यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट की जानकारी भी ले सकते हैं। मगर यदि सब समझ में ना आए तो आप सीधा नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चले जाएं, किसी आयुष्मान आरोग्य मंदिर PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछ लें। डॉक्टरों से पूछें, ANM से पूछें, आशाओं से पूछें, जो भी आपको जानकारी लेनी है।
2: सुनने में आसान लगता है पर घर वाले भी तो माने, कई सास कुछ ना कहे, कोई पड़ोसन ना कुछ कहे, फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो, लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है।
1: इसलिए तो मैं कहती हूँ सुनीता जी कि माँ को अकेला मत छोड़ो, यह सिर्फ माँ का फैसला नहीं परिवार की समझ का होशियारी का फैसला है। अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए और सबको समझाना चाहिए कि ये वैक्सीन क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी का स्वास्थ्य भी तो जरूरी है। देखो कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टरों की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी, बाकी तो सब शोर है।
0: बिल्कुल सही कहा टीकन देवी जी आपने। तो श्रोताओं जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे, इसीलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो फिर मैसेज आया, पड़ोस वाली कमला लिख रही है मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था, अब तो बताओ यह क्या माने?
1: देखो कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन यह डर हर इंजेक्शन में संभव है, इससे यह साबित नहीं हो जाता कि टीका खतरनाक है। बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है, इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा, यही सब। अफवाहें क्या करती हैं, काम बिगाड़ देती हैं, एक घटना उठाती हैं और उसे एक झूठ को सच बना देती हैं।
2: अच्छा मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहाँ क्या पूछूं?
1: देखो सुनीता जी, वहाँ आप सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है, क्या यह एक ही डोज है, क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है, क्या इसका फर्टिलिटी पर असर पड़ता है। डॉक्टर तुम्हें सारे जवाब साफ साफ देंगे और अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूँ मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: देखो सुनीता जी, यही तो समझदारी है, जो नहीं पता है उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता है, उसके बाद सही जगह से सही जानकारी लेना। कई लोग तो गलती करते हैं बिना समझे और मानते भी नहीं है और जोर से बोलने लग जाते हैं और जोर की आवाज को ही सही समझ लिया जाता है, इसलिए सही जानकारी बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा टीकन देवी जी आपने। इसलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों की जानकारियां, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, ना कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।

0: तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। यह बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: देखो सुनीता जी, इसीलिए जानकारी जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है, और जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ हर घर में जानी चाहिए, और यही सुनो शारदा का उद्देश्य है, जो कि स्मार्ट के साथ मिलकर कार्यक्रम चला रहा है, सेहत सही लाभकारी।
0: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घरों में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है तो उन्हें अपनी सेहत की चिंता होती है। यही सब हमें बदलना है।
2: बिल्कुल सही कहा टीकन देवी जी आपने, और ये अक्सर हम देखते भी हैं समुदाय में जाकर के, कि महिलाएं काम में लगी रहती हैं लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती हैं। और इन्हीं सब बातों की जानकारी जो देता है वो आपका अपना कार्यक्रम देता है, जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, और सही जानकारी आप तक पहुंचे, यही इस कार्यक्रम का मकसद है। सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया है।
0: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहाँ डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूँगी ना ना, लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड मैसेज देखकर फैसला नहीं करूँगी।
1: बस सुनीता जी, यही तो जीत है। सही सवाल पूछना, सही जानकारी रखना, जागरूक होना, यही तो उद्देश्य है, यही तो हम अपने श्रोताओं को समझाना चाहते हैं। अगर किसी भी विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, सीएससी पीएससी जाएं, डॉक्टर से बात करें, एएनएम से बात करें, आशा वर्कर से बात करें। आजकल तो बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन कभी भी किसी झूठी खबर पर तुरंत विश्वास न करें। बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेजेस हमारे सामने रोज आते हैं, उन तथ्यों को ढंग से जांच और परख लें।
0: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उससे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं तथ्य देखो।
1: हाँ सुनीता जी, और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में तो बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, जो आज उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।

0: आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में आते रहते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो गाँव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियाँ कहाँ। यह भी गलतफहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकते। सरकार इसीलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित ना रहे।
1: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात जगह देखकर नहीं आती।
2: और हाँ, इसीलिए तो रोकथाम सबसे जरूरी चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात है। जो चीज सिर्फ पैसों वालों तक सीमित थी, अब वह आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
1: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
2: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सब पूछो। जानकारी मांगना आपका अधिकार है और यही अच्छी और बेहतर समझ है और यही नागरिक समझ है।
0: बिल्कुल। और एक और जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
1: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इस उम्र की है, वह तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
2: जी सुनीता जी, आजकल लोग मोबाइल पर बेहद जल्दी विश्वास करते हैं, फॉरवर्ड मैसेज

0: इस पर यकीन कर लेते हैं जिससे बहुत सारी भ्रांतियां फैलती हैं। उसे भी साथ लेकर आओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सभी थोड़े थोड़े अवेयर होंगे और सेहत की जानकारी चूल्हे की आग की तरह हर जगह फैल जाएगी, एक घर से दूसरे घर पहुंच जाएगी, जैसे कि एक चूल्हे की गर्मी दूसरे चूल्हे की गर्मी तक पहुंच जाती है।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
0: सुनीता जी, तो आप कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र थी और मुझे पूरी जानकारी सही नहीं थी। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी अब समझ गई हूँ, इससे बच्चों का भी भरोसा बढ़ता है।
1: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो, यही संवाद भविष्य बदलता है।
0: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती है कि हमें ये सब नहीं आता, वहाँ भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो, जानकारी का दरवाजा एक नहीं है बल्कि कई सारे हैं।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है, डर अभी भी है पर अब डर के सामने जवाब भी है।
0: बस यही तो हमें चाहिए, सवाल रहे उनके जवाब भी रहे, सही जानकारी रहे, जागरूकता रहे, सभी घरों में सही निर्णय पहुंचे। हम स्मार्ट के साथ मिलकर जो कार्यक्रम चला रहे हैं सुनो शादा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो के माध्यम से सेहत सही लाभ कई, हमारा एक ही उद्देश्य है कि समुदाय तक हम एक सही सटीक और सच्ची जानकारी पहुंचाएं। अगर किसी के मन में डर है, भ्रांति है, तो हम उसे दूर करें, खास तौर से महिलाओं के डर, अपनी बेटियों को लेकर वैक्सीन लगवाना कितना सही है, ऐसे कुछ डर हैं जो महिलाओं के मन में बैठ जाते हैं। और ऐसे में सभी को प्रयास करना होगा, परिवार के बड़े सदस्यों से लेकर मुखिया सदस्य से लेकर सभी को मिलकर निर्णय लेने होंगे और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखना होगा।
1: बहुत सही कहा टीकन देवी जी आपने, तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। और साथ ही साथ सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। तो साथियों अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। और छठी और आखिरी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
0: और हाँ, एक बात मेरी भी तरफ से, माँ होना सिर्फ डरना नहीं पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब पहुँचाना यही हम लोगों की असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
1: बिल्कुल, यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CSC या जिला अस्पताल में जाकर जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही है, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए।
0: और अंत में एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UWIN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि यह आपके लिए कठिन है तो ये चिंता की कोई बात नहीं, आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं है। हम सब मिलकर आज शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिला, बुजुर्ग और बच्चों को सेहत का विशेष ध्यान रखने का सुझाव देंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ रहेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। अब आपसे विदा लेते हैं। आज का जो हमारा विषय था उस पर मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जागरूकता फैलाई होगी और हमारे श्रोता हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े होंगे। हम एक नए विषय पर नई जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे। वक्त तो चला है विदा लेने का। सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
7: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त

एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले एक से दो उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

इस त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए आप और हम सब मिलकर एक वचन ये भी देते हैं कि हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, महिलाओं का सम्मान करें। तब होगा असल मायने में रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आई एम सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी

0: करता है दिल।
1: What is this shit? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
2: So what? मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
1: You know, Shail, it really hurts.

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

इस त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए आप और हम सब मिलकर एक वचन ये भी देते हैं कि हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, महिलाओं का सम्मान करें। तब होगा असल मायने में रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं वही आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, खेती किसानी और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। जो हमारे किसान बहन भाई खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहतर होती है, क्योंकि जब कभी खेती में घाटा हो जाता है तो पशुपालन से वो भरपाई हो जाती है और एक संतुलन है वो बना रहता है। इसीलिए खेती के साथ साथ पशुपालन करना बहुत ज़रूरी है। और किसान मित्रों, आपको तो पता ही है कि गांव में रहने वाले जो हमारे किसान बहन भाई हैं खेती के साथ साथ अधिकतर पशुपालन से अच्छी खासी कमाई कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। आज पशुपालन व्यवसाय में अच्छी नस्ल के बछड़ा बछिया विभिन्न उद्देश्य से उनका पालन किया जा रहा है। जहां बछिया और पड़िया का पालन दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है तो वहीं बछड़े का पालन खेती संबंधित कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऐसे में इनके खान पान और रहन सहन का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बदलते मौसम का प्रभाव खेती के साथ साथ हमारे पशुओं पर भी पड़ता है और साथ ही साथ हमारे जो नवजात पशु हैं उनकी देखभाल करना तो बहुत जरूरी है। किसान मित्रों, गांव में बेहतर आमदनी के लिए लोग दुग्ध उत्पादन की ओर तेजी से बढ़े हैं और इसमें अच्छी आय होने के कारण भारत में डेयरी उद्योग तेजी से बढ़ा है। कृषि के क्षेत्र में पुरुष वर्ग खेतों में काम कर अन्न उत्पादन में लगा रहता है तो हमारी जो महिला हैं वो खेती के अलावा पशुपालन में लगकर घर में समृद्धि लाने में लगी रहती हैं। आपने देखा होगा गांव में अधिकतर जो महिलाएं होती हैं वो ही पशुपालन का काम देखती हैं। किसान मित्रों, हमारी भारतीय महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति पाई जाती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं कुछ ना कुछ करके घर को मजबूत करने में लगी रहती हैं। गांव में आय के बेहतर रास्ते ना होने के कारण महिलाएं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लगी हुई हैं। गांव में पशुपालन के क्षेत्र में 70% महिलाएं लगी हुई हैं और पशुपालन कर दुग्ध उत्पादन में इन महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। सहभागिता को अपनाकर महिलाएं न केवल सशक्त हो रही हैं बल्कि देश के आर्थिक ढांचे को भी मजबूत कर रही हैं। किसान मित्रों, आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए डेयरी आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। बात दुग्ध उत्पादन की करें तो लाखों भारतीय ग्रामीण परिवारों के लिए डेयरी एक सदियों पुरानी परंपरा रही है। दुग्ध किसी भी अन्य कृषि वस्तु की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देता है। तो आपने जाना कि कितना जरूरी है खेती के साथ साथ पशुपालन करना। और किसान मित्रों, यहाँ पर आपको एक बात पर और गौर करने की जरूरत है कि खेती से तो हमें 3 महीने बाद 6 महीने बाद उत्पादन मिलता है, लेकिन पशुओं से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। आजकल तो पशुओं के गोबर के कंडे भी बेचे जाते हैं और गोबर का बड़ा अच्छा खाद बनता है, वो भी हमारे किसान भाई प्लांट लगाकर उसको बेचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खेती के साथ साथ अगर आप पशु पालन करते हैं तो आपको और अधिक आर्थिक लाभ होता है। और जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब कभी आपको खेती में घाटा हो जाता है, कभी कोई फसल आपकी अच्छी नहीं हो पाती है या बाजार अच्छा नहीं मिल पाता है, तो उसकी भरपाई हमारे पशु अपने उत्पादन से कर देते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही पशुपालन बेहतर आमदनी का स्रोत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं उपेंद्र राणा।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश, कलाकार थे उपेंद्र राणा। किसान मित्रों, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आमदनी का एक बढ़िया स्रोत बन के सामने आया है और बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई अपनी खेती के साथ साथ इस व्यवसाय की तरफ भी रुख कर रहे हैं और ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार भी कई सारी योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को मछली पालन की शुरुआत करने के लिए आर्थिक मदद भी प्रदान करती है। देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है। मछली पालन व्यवसाय में हमारे किसानों और युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। अगर कोई किसान भाई या कोई युवा मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वो नीली क्रांति योजना का लाभ उठाकर अपनी आय को बढ़ा सकता है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनको एक साथ सम्मिलित कर दिया गया और जिसका नाम रखा गया है नीली क्रांति योजना। इस योजना में मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य की मार्केटिंग, मछुआरा बीमा समेत मत्स्य विकास के सारे सेक्टरों को रखा गया है। नीली क्रांति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अनुदान की भी सुविधा दी गई है। इस योजना में जिसमें सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए सरकार ने 40% अनुदान की सुविधा रखी है, वहीं एससी एसटी या महिला वर्ग के लिए सरकार ने 60% अनुदान की सुविधा रखी है। अगर किसी किसान भाई को इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना है तो वो अपने जिले के जनपदीय कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकता है। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही नीली क्रांति योजना की। और किसान मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं तरुण बाल्यान और किस्सा रहेगा सरवर नीर का।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सरवर नीर के किस्से से ये रागनी। कलाकार थे तरुण बाल्यान। और किसान मित्रों, अब बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की, जो किसानों द्वारा बनाई गई एक सामूहिक संस्था है जिसका उद्देश्य बाजार में किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। ये एक पंजीकृत कानूनी संस्था है जो कृषि उत्पादों के सामूहिक एकत्रीकरण, इनपुट की थोक खरीद, बाजार तक सीधी पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से हमारे किसानों को स्केल की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने में मदद करती है। हमारे सीमांत, छोटे और भूमिहीन किसानों को एफपीओ के रूप में एकत्रित करने से बाजार संपर्क बढ़ने में मदद मिलती है, जिससे हमारे किसान भाइयों की आय और आर्थिक मजबूती में सुधार हुआ है। ये छोटे किसानों को संपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करता है और विपणन, तकनीकी सेवाएं, प्रसंस्करण और खेती के अन्य पहलुओं को कवर करता है। एफपीओ छोटे किसानों को एक साथ जोड़ते हैं और एक कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होते हैं। वे अपने सदस्यों की उपज का एकत्रीकरण करते हैं और सामूहिक रूप से बाजार में बेचते हैं। ये संगठन हमारे किसान भाइयों को ऋण, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो किसान मित्रों, आपके पास भी अगर कोई किसान उत्पादन संगठन है तो आप उससे जुड़ सकते हैं, या फिर आप भी 10-20 किसान मिलकर के किसान उत्पादन संगठन बना सकते हैं और फिर इसके द्वारा जो लाभ मिलते हैं आपको, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान मित्रों, बलराम बैसला द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

मेहरबानो, कालिया ने कहा जब उसे दया दर्द आया, हरिया तने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, उस दुखिया ते कंगाली में तू चीर लेके आ गया, करके बदले उसे माफ कर देता, वो तो तेरा बेटा था, द्रोही।

मेरे दिल में आहे भरती थी, जब मेरी ब्याही मुझे हाथ पकड़ के डांटती थी, महाराज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ब्याहता हूँ और यह कमर रोहतास तुम्हारा इकलौता पुत्र है, तुम्हें दर्द नहीं आया मेहरबानो? कहने लगा मैंने बज्जर की छाती करके अपनी ब्याही तहसील ले लिया, भला किसे अपने बेटे की मौत पर दुख नहीं होगा? मेहरबानो कहन लगा कालिया तुझे ऐसा नहीं करना था। मेहरबानो रोष में आके फिर कह दिया हरिया ने, अरे कालिया तेरा नाश जागा, मेरी बात सुन ले, तेरा अगर पेठा भर गया हो चीर लेने से भला कैसे,

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सरपट भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हरदम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
2: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
3: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

इस त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए आप और हम सब मिलकर एक वचन ये भी देते हैं कि हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, महिलाओं का सम्मान करें। तब होगा असल मायने में रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

इस त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए आप और हम सब मिलकर एक वचन ये भी देते हैं कि हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, महिलाओं का सम्मान करें। तब होगा असल मायने में रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: आप सबका स्वागत है और श्रोताओं, आज रेडियो के लिए लेकर आया है विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम एक परियोजना के तहत चलाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये कार्यक्रम है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना, उन्हें सशक्त करना ताकि वो इससे मुक्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सके। तो इसी के साथ श्रोताओं, आज के अंक की अगर हम बात करें तो इस अंक में हम आपके लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आ रहे हैं जो कि अपने परिवार के विषय में ही सोचती हैं, जो करती हैं अपने परिवार के लिए ही करती हैं, अपने प्रेम भाव से सबका ध्यान रखती हैं। लेकिन हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा कम आंका जाता है और ये सोचा जाता है कि घर का काम करना और घर वालों का ख्याल रखना महिला का ही काम है। इस काम के लिए महिला का धन्यवाद करना या उनका सम्मान करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। तो इसी मानसिकता पर आघात करती आज की ये कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।

0: मैं पहले तो सब काम सही से ही करती थी, पर अब तो जैसे हर बात पर मुझे कितना कुछ कहा जाता है, जैसे मुझे कुछ सुनना और समझना ही नहीं आता हो। सब तो गलत नहीं हो सकते, पर
1: दीपा, दीपा, एक बार में सुनाई नहीं देता, तब से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ। कब तक एक ही काम को लेकर बैठी रहेगी? जल्दी जल्दी हाथ चला। और हाँ, तुझे सोहन के साथ धर्मशाला शहर भी जाना है, उसको कुछ जरूरी सामान लाना है वहाँ से। जल्दी चला हाथ, घर से कुछ सीखकर नहीं आई है?
0: पर माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अगर मेरा जाना इतना जरूरी ना हो तो क्या मैं घर पर रह लूं?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे रोज रोज के बहानों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। चुपचाप उसके साथ बाजार जा। अरे बेटा सोहन, हाँ कितनी देर में निकलेगा? सब तैयार है तेरा, जल्दी आ जा।
2: हाँ माँ, बस का समय 2 घंटे बाद का है, तो बस 1 या 1.5 घंटे में निकलते हैं यहाँ से। काफी थक गया हूँ कल से, तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ।
1: ठीक है मेरे लाल, तू आराम कर, फिर तब तक मैं इसको किसी और काम पर लगा देती हूँ, ताकि दुकान के लिए औजार तैयार रहे। वैसे भी ये तो पूरे दिन बहाने ढूंढती रहती है काम ना करने के लिए।
0: लेकिन माँ जी, मैंने पहले से ही औजारों पर काम कर लिया है और वो तैयार भी है।
2: अरे तूने बिना पूछे उन पर काम कर दिया? कितनी बार बोला है जब तक नहीं बताया जाए काम नहीं करना। हम बताएंगे कब करना है, कैसे करना है, उसके बाद ही तुम कोई काम करोगी। समझ नहीं आता तुम्हें?
0: ठीक है, मुझे अभी बता दीजिए कुछ काम करना है या कुछ सुधार करना है तो मैं अभी करके देती हूँ।
2: हाँ सब अभी बता दूँ, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो ना करूँ, है ना?
0: मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया।
2: बुद्धि होगी तो ध्यान दोगी ना?

0: बुद्धि ही नहीं है तुम्हारे पास तो कहाँ से लाओगे ध्यान बेवकूफ है की।
1: दीपा, ओ रे दीपा, जल्दी से आ। और हाँ, एक बाल्टी भर के जल्दी से आना और साथ में लोटा भी साथ में ले आना, समझी?
0: और भोजन में क्या है? मुझे भोजन करके निकलना है, इसलिए खाना तैयार रखना थोड़ी देर में, समझ रही हो?
2: ठीक है जी, मैं खाना बांध भी लेती हूँ, रास्ते में भूख लगेगी तो काम आएगा।
1: ए भगवान, कैसी बहू लेकर आए हैं? तुझे बस हर वक्त घूमने की पड़ी है, हर वक्त दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। दुकान का जरूरी सामान लेकर आना है, फटाफट बस से सीधा घर पे आना।
2: ठीक है माँ जी, मैंने सामान की सूची भी रख ली है झोले में।
0: सूची के साथ साथ पैसे भी रखे हैं? नहीं, झोली में।
2: जी, जो औजारों को बेचकर पैसे मिले थे वो तो मैंने आपको ही दे दिए थे।
0: और जो तेरे घर वालों ने दिए थे उसका क्या?
2: वो तो मैंने अपने पास ही रखे हैं।
0: क्यों, वो क्यों रखे अपने पास?
2: जी, मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना था, इसलिए जो मेरे पिताजी ने दिए थे वो रुपए मैंने अपने पास रख लिए।
0: क्या, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई है पैसे रखने की? आज के बाद इतनी जरूरत मत करना इस घर में ये करने की, मुझे दे सारे रुपए।
1: अरे बेटा सोहान, बेटा मुझे भी दे दे थोड़े पैसे, घर के लिए कुछ जरूरी सामान लाना है। वैसे भी काफी दिन से मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, इसी बहाने बाजार का एक चक्कर भी लगाऊंगी।
2: लेकिन मुझे भी अपने लिए कुछ जरूरत की चीजें खरीदनी थी, उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए।
1: है री, तू तो बड़ी स्वार्थी है, तुझे तो बस अपनी ही पड़ी रहती है, किसी और के बारे में कभी सोचा है?
2: मैं, माँ जी, मैं स्वार्थी हूँ? मैं स्वार्थी तो नहीं हूँ, आप ही बताओ, क्या माँ जी ने ठीक कहा? क्या मैं स्वार्थी हूँ? क्या आपको भी लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ?
0: मुझे तो तू नलायक लगती है, और ये सब बातें मुझसे मत पूछा कर। ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और दिखाना।
2: तो किससे करूं? पत्नी हूँ मैं आपकी, इसीलिए मेरा, मेरे हितों का, मेरी जरूरतों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है।
0: तेरी जरूरतें तो मैं आज घर आके देखता हूँ, मुंह बंद कर अपना इसी वक्त।
2: आपको लगता है ऐसे बात करने से कुछ हल होगा, या फिर मुझे ना बोलने देने से? मैं अपनी बात समझाना चाहती हूँ कि
0: परेशानी तुझे है तो तू ढूंढ हल, मेरे हिसाब से सब ठीक है।
2: क्या है आपका हिसाब?
0: मुझसे दूर हो और वापस मत आना मेरे साथ।
2: सोहन, आपका तरीका क्यों बिगड़ता जा रहा है? जैसे जान के ही आप मुझे समझना ही नहीं चाहते हो।
0: हट मेरे आगे से, सारे हॉस्टल यहीं बिखेर दूंगा।
2: ओह, क्या हो रहा है ये सब?
0: अब रुक क्यों गई?
2: थोड़ा धीरे चलो।
0: भाग, बस आ रही है वहाँ पर, अरे भाग ना।
2: सोहन रुको, बस को रोको, मुझे भी साथ ले चलो।
0: ये देखो, तब चलने नहीं दे रही थी, अब भाग नहीं रही है, कहाँ रह गई थी, भाग ना अब।
2: सोहन, सोहन, सोहन, रुको। लगता है अच्छा ही हुआ कि ये बस छूट गई, ये कहाँ ले जाती मुझे जीवन की राह पर। अपने लिए खड़ा होना बहुत ही जरूरी है, वरना जीवन बंद जाता है और आत्मा भी बन जाती है। अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं बंधी नहीं हूँ।

0: इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है हिंसा गुनो, और आज के इस कार्यक्रम में जो कहानी अभी आपने सुनी उस कहानी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। कुछ जवाब ढूंढने का हम जरूर प्रयास करेंगे कि इस तरह की जब पारिवारिक चीजें होती हैं तो उनका हमारी मानसिकता पर हम पर क्या असर पड़ता है। तो रजनी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिस तरह से हमने ये कहानी सुनी, और इस कहानी में जब हम देखते हैं कि महिला और पुरुष में कितना बड़ा अंतर है कि पुरुष अगर वो थका है तो वो आराम कर सकता है, लेकिन महिला को वो अधिकार नहीं है, तो ये जो हमारे समाज का विचार है, सोच है, ये किस तरह से हम पर इसका असर पड़ता है, किस तरह से ये हमें इफेक्ट करता है?
1: देखिए मीनाक्षी, जैसा कि पहले आपने कहा कि हम एक दोहरी मानसिकता में जी रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी दो तरह की शख्सियत है। घर के अंदर हम कुछ रवैया अपनाते हैं और घर के बाहर हमारा रवैया बदल जाता है। देखिए, जब एक बेटी की शादी होती है तो माँ बाप की इच्छाएं, उम्मीदें ये होती है कि हमारी बेटी को हर तरह की सुख सुविधा मिले
0: जी।
1: लेकिन जब एक बहू को हम अपने घर लेके आते हैं तो उसके लिए हम इस तरह की सोच नहीं अपनाते हैं। तब हमारी एक दोहरी मानसिकता शुरू हो जाती है। तब हम उस बहू के साथ आए दिन कई तरह से उसको प्रताड़ित करते हैं। जैसे कि इस नाटक में दिखाया गया कि बेटा थक के आ रहा है तो उसको आराम करने दिया जा रहा है, बहू की जब तबीयत खराब है तो फिर भी उसको बोला जा रहा है कि आप काम करो, और ये भी ताने मारे जा रहे हैं कि आप काम करो और आपको कुछ नहीं आता है और आपने अपने मायके में क्या सीख के आई हो। तो ये अक्सर बहुत से घरों में औरतों को ये सुनने को मिलता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है। देखिए, पेट से तो कोई सीख के नहीं आता है। जो भी हम सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं वहाँ से सीखते हैं। अगर आप एक अच्छा घर चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति का माहौल बना रहे, तो देखिए, अगर आपकी बहू को दो चीज़ें नहीं आती तो आप सिखा दीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि लड़का घर नहीं छोड़ता, लड़की घर छोड़ के आती है। लड़की जब 21, 22, 25 साल की होती है तो उसकी शादी कर दी जाती है। एक डेढ़ साल तो उसको उस परिवार में एडजस्ट करने के लिए लगता है। और बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो आजकल पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम भी जानती हैं। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जहां पे उनको घर के काम करने का मौके नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़ाई की ओर उस परिवार को लेके जाने के बजाय क्यों ना हम उस लड़की को सिखाएं कि कौन सा काम कैसे किया जाता है। अगर हम इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में कला कलेश का माहौल हो सकता है और किसी भी लड़की के साथ हिंसा हो सकती है। तो मुझे लगता है हमें ज़रूरत है हमें अपने रवैये को बदलने की और ये दोहरी मानसिकता को बदलने की। जब तक ये मानसिकता हमारी दोहरी रहेगी हम किसी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल रजनी जी, जो भी आपने अपने विचार रखे उनके आधार पर ज़रूर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बहुत आवश्यकता है महिला और पुरुष दोनों को ये समझने की कि दोनों के समान अधिकार हैं, और अगर हम एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, तो कभी भी ये रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद है श्रोताओं की आज की इस कहानी से हम सब ने कुछ न कुछ सीखा होगा और अनुभव भी किया होगा कि कहीं न कहीं महिलाओं के जीवन से जुड़ा ये बहुत बड़ा सत्य है जिस पर विचार करना या बदलने का प्रयास करना बहुत आवश्यक है, और ये तभी संभव है जब हम सब अपनी सोच को बदलने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी भी लगी होगी और इससे हमने जरूर अपनी मानसिकता को बदलने का एक नजरिया भी देखा होगा। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़े अपने कोई भी विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमारा दूरभाष नंबर है 7018117091। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक आप यूं ही बने रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
3: जी।
2: प्लीज कैरी ऑन।
3: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं, टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
2: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
3: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
2: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरकंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। शकरकंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए

एवोकाडो यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरों शादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

इस त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए आप और हम सब मिलकर एक वचन ये भी देते हैं कि हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, महिलाओं का सम्मान करें। तब होगा असल मायने में रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। यह पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तिका पर आधारित है।
1: पृष्ठ संख्या 1, भाग 1, जीव रूपों के साथ कार्य करना। यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ छात्र छात्राएं जीव रूपों के साथ कार्य कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 2, जीव रूपों में पृथ्वी पर सभी सजीव वस्तुएं सम्मिलित हैं। इनमें मनुष्य, पशु, पक्षी, मछलियां, पौधे, कीड़े, यहां तक कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया और विषाणु यानी वायरस भी सम्मिलित हैं। जीव रूपों के साथ काम करने में परियोजनाएं आपको विभिन्न तरीकों से सजीव वस्तुओं के साथ काम करने में सहायता करेंगी। आप विभिन्न तरीकों से पौधे उगाने, अपने आसपास की जैव विविधता को अंकित करने, औषधीय पौधों का सर्वेक्षण करने, पालतू जानवरों की देखभाल करना और प्रकृति पत्रिका से संबंधित परियोजनाओं का चयन कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने साथियों के सहयोग से नया एवं रोचक क्या कर सकते हैं। इस खंड में परियोजनाओं के 2 उदाहरण दिए गए हैं। आपको केवल एक परियोजना ही चुननी होगी। आप इनमें से किसी एक परियोजना का चयन कर सकते हैं अथवा अपने शिक्षक की सहायता से अपनी रोचकता के अनुसार परियोजना तैयार कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 3, परियोजना 1, विद्यालय रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन। ये परियोजना आपको भोजन के लिए पौधे उगाने के विषय में सीखने में सहायता करेगी। आप अपने विद्यालयी परिसर में एक रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन बनाएंगे जो पौधों की क्यारियों या गमलों में तैयार किया जा सकता है। चित्र 1.1 का अध्ययन करें। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे: उपकरणों और सामग्रियों के विषय में जानने में, खेत, बगीचे, नर्सरी का भ्रमण करने में, वर्मी कंपोस्ट बनाने में, विद्यालयी रसोई उद्यान की व्यवस्था और रखरखाव की योजना बनाने में, पौधों की सुरक्षा, रसोई उद्यान के उपाय, देखभाल और रखरखाव के बारे में जानने में, फसल की कटाई में। यहाँ एक चित्र दिया गया है। चित्र 1.1, विद्यालयी रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन। यहाँ एक चित्र है, इसमें छात्र छात्राएं विद्यालयी रसोई उद्यान में कार्य कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 4, हम सभी विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद लेते हैं। हम में से कुछ लोग ताजे फल और सब्जियां, कुछ शाक यानी हर्ब्स और मसालों के साथ पकी हुई सब्जियां और कुछ अचार एवं टमाटर सॉस जैसे संरक्षित खाद्य पदार्थ यानी प्रिजर्व्ड फूड के साथ खाना पसंद करते हैं। हमारे भोजन का अधिकांश भाग खेतों से आता है। सब्जियां यानी बैंगन, ककड़ी और मिर्च अथवा शाक यानी हर्ब्स, धनिया और पुदीना रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन में उगाई जा सकती हैं। रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन को सब्जियों के उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसा उद्यान होता है जिसमें फल, सब्जियां और में भी जाना जाता है। ये एक ऐसा उद्यान होता है जिसमें फल, सब्जियां और शाक यानी हर्ब्स उगाई जाती हैं। उद्यान से प्राप्त उत्पादन अथवा उपज सामान्यतः एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती है। इस परियोजना में आप अपने विद्यालय में भोजन के लिए पौधे उगाने के विषय में सीखेंगे। आप अपने विद्यालय परिसर में एक रसोई उद्यान बनाएंगे जो पौधों की क्यारियों अथवा गमलों में हो सकता है। चित्र 1.1 का अध्ययन करें। मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगी। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप ये कार्य करने में सक्षम होंगे: 1, सामान्य बागवानी औजारों उपकरणों और सामग्रियों की पहचान करने और उनके उपयोग का वर्णन करने में। दो, बागवानी उपकरणों का उपयोग करके विद्यालय के मैदान पर या गमलों में मिट्टी तैयार करने में। तीन, बीज या पौधों का रोपण सीखेंगे। पानी, खाद और उर्वरकों का उपयोग करके पौधों या बीजों की वृद्धि में उनकी सहायता करने में। चार, रसोई उद्यान में पौधों को बाड़ और जैविक कीटनाशकों की सहायता से सुरक्षित रखने में। पांच, रसोई उद्यान अथवा गमलों में सब्जियां या शाक यानी हर्ब्स की कटाई करने में मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए आपको विभिन्न उपकरणों और सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आइए सबसे पहले इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तालिका 1.1 का अध्ययन कीजिए। पृष्ठ संख्या 5, तालिका 1.1। रसोई उद्यान में पौधों की खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य उपकरण अथवा सामग्री। चित्र, उपयोग। एक, खुरपी यानी गार्डन ट्रॉवेल। खुरपी का चित्र, इसका उपयोग मिट्टी खोदने और पौधे रोपने के लिए किया जाता है। दो, हैंड कल्टीवेटर। हैंड कल्टीवेटर का चित्र, इस उपकरण का उपयोग मिट्टी को नरम करने, खरपतवार हटाने और मिट्टी में खाद मिलाने के लिए किया जाता है। तीन, हजारा यानी रोज अटैचमेंट या होज पाइप। हजारा का चित्र, इसका उपयोग क्यारियों या गमलों में नवांकुर और पौधों को पानी देने के लिए किया जाता है। चार, बागवानी दस्ताने, रबर से बने बागवानी दस्तानों का चित्र, इसका उपयोग हाथों की सुरक्षा और उपकरणों पर मजबूत पकड़ प्रदान करने के लिए किया जाता है। पांच, बागवानी कैंची का चित्र, इसका उपयोग बगीचे में शाखाएं, झाड़ियां एवं तना काटने के लिए किया जाता है। पृष्ठ संख्या 6, बीज नवांकुर, कंद, प्रकंद, कलम आदि के चित्र, इनका उपयोग बगीचे में पौधे उगाने के लिए किया जाता है। 7, गमले की मिट्टी अथवा मिश्रण यानी गमले के लिए मिश्रण खाद, परलाइट वर्मिक्यूलाइट, मिट्टी

और कॉयर या पीट मॉस जैसी सामग्री से तैयार किया जाता है। गमले की मिट्टी का चित्र। इस सामग्री का उपयोग डिब्बों यानी कंटेनरों या गमलों को भरने के लिए किया जाता है। 8. जैविक मल्चिंग सामग्री जैसे अनाज का भूसा, पत्ती की खाद, कटी हुई पत्तियां, कटी हुई घास आदि। कटी हुई घास आदि का चित्र। इनका उपयोग नमी बनाए रखने और खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। 9. पौधों के सूचक पत्र यानी लेबलिंग। पौधों के सूचक पत्र का चित्र। इनका उपयोग बगीचे में विभिन्न पौधों की पहचान करने के लिए किया जाता है। 10. पुराने पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी पाइप, लकड़ी की डंडियां, बांस के खंभे, धातु के खंभे और रस्सी। पुराने पाइप आदि का चित्र। इनका उपयोग सुरक्षात्मक बाड़ बनाने के लिए किया जाता है। 11. कूड़ेदान और तिरपाल, पुराने मोटे कपड़े का टुकड़ा, कूड़ेदान आदि का चित्र। इनका उपयोग खाद या वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। 12. नीम की पत्तियां और जेरी कैन, बड़ी बोतल, नीम की पत्तियों आदि का चित्र। इन सामग्रियों का उपयोग जैविक कीटनाशक तैयार करने के लिए किया जा सकता है। कीटनाशक का उपयोग पौधों से हानिकारक कीटों या कीड़ों को मारने या दूर रखने के लिए किया जाता है। 13. खाद, खाद का चित्र। खाद एक प्राकृतिक उर्वरक है जो खेत में जानवरों के गोबर से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग पौधों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। चित्र 1.2 का अध्ययन कीजिए। 14. स्प्रे बोतल का चित्र। इसका उपयोग किसी तरल पदार्थ की कम मात्रा छिड़कने यानी स्प्रे के लिए किया जाता है। 15. फावड़ा, फावड़े का चित्र। ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी या अन्य सामग्रियों को खोदने और हटाने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए, यदि आपको ये सभी उपकरण और सामग्री नहीं मिल पाती है तो चिंता न करें, आप अपने शिक्षक या विशेषज्ञ से विकल्प के बारे में पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 8। क्या आप जानते हैं, चित्र 1.2 में एक भैंस और कुछ व्यक्ति दिखाए गए हैं। ये व्यक्ति उस भैंस का गोबर इकट्ठा कर रहे हैं। भारत में पारंपरिक रूप से जानवरों के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता रहा है। मैं स्वयं और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखूं? रसोई उद्यान में कार्य करते समय कुछ मुख्य सावधानियां हैं। 1. अपने शिक्षक से गमला उठाने के सही तरीके के विषय में पूछिए। यदि आपको लगता है कि गमला बहुत भारी है तो किसी की सहायता लीजिए। इसे अकेले उठाने की कोशिश न करें। चित्र 1.3। 2. अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए उपकरणों और सामग्रियों का प्रयोग करते समय दस्ताने पहनिए। सुनिश्चित कीजिए कि ये पूर्णतः आपके हाथों के आकार के अनुसार होने चाहिए ताकि उपकरणों पर आपकी पकड़ मजबूत हो। 3. बागवानी उपकरणों और सामग्रियों का उपयोग करते समय सामग्री के सुरक्षित उपयोग के लिए दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। 4. प्रदर्शन के दौरान सही उपयोग और तकनीकों को समझने पर ध्यान दीजिए। 5. यदि आप किसी उपकरण का उपयोग करने के तरीके के बारे में अनिश्चित हैं तो किसी न किसी की सहायता अवश्य लीजिए। चित्र 1.3। बागवानी करते समय सुरक्षित रहिए। गमला सावधानी से उठाइए। औजारों का सही ढंग से उपयोग कीजिए। दस्ताने और एप्रन का उपयोग कीजिए और सामग्री के सुरक्षित उपयोग के लिए उपलब्ध निर्देश पढ़िए। चित्र 1.3 में कुछ छात्र छात्राएं बागवानी कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 9। 6. औजारों

और उपकरणों को जंग लगने से बचाने के लिए नियमित रूप से साफ कीजिए और धोने के बाद उन्हें पोंछिए। 7. सुनिश्चित कीजिए कि उपकरण स्टोर या अलमारियों पर व्यवस्थित तरीके से रखे गए हों ताकि उनसे किसी को चोट न पहुंचे। इंटरनेट सुरक्षा। इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने शिक्षक से सहायता लीजिए। सतर्क रहिए कि बिना जांचे कुछ भी अपलोड या डाउनलोड न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी कहीं भी साझा न करें। आरंभ करने से पहले मुझे क्या जानने की आवश्यकता है? अपना रसोई उद्यान बनाने के विषय में प्रायोगिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप किसी कृषि फार्म पर जा सकते हैं। यदि आपके विद्यालय के पास कोई खेत नहीं है तो आप किसी नर्सरी, बगीचे या बाग में भी जा सकते हैं। चित्र 1.4 का अध्ययन कीजिए। चित्र 1.4, विशेषज्ञ से सीखना। चित्र 1.4 में विशेषज्ञ छात्र छात्राओं को बागवानी से संबंधित कई बातें सिखा रहे हैं। गतिविधि 1, किसान, नर्सरी कार्यकर्ता, माली या विशेषज्ञ से परस्पर संवाद हेतु कृषि फार्म, नर्सरी या उद्यान का भ्रमण। भ्रमण से पहले प्रश्नों की एक सूची बनाना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप दिए गए प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। आप भ्रमण करने के बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। 1. कौन कौन से पौधे उगाए जा रहे हैं? उसको अंकित करने के लिए खाली स्थान दिया गया है। पृष्ठ संख्या 10। 2. क्या सभी पौधे एक ही समय पर लगाए गए थे? यदि नहीं तो क्यों? खाली स्थान। 3. क्या रसोई उद्यान में सभी पौधे उगाए जा सकते हैं? हाँ या नहीं? खाली स्थान। 4. बुवाई या रोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? खाली स्थान। 5. पौधों को मिट्टी से मिलने वाले पोषण के अतिरिक्त पोषण किस प्रकार प्रदान किया जाता है? खाली स्थान। 6. पौधों को जानवरों और कीटों से किसी भी प्रकार के नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 11। 7. अपने भ्रमण के दौरान आपने कौन सी 2 सबसे रोचक बातें सीखी? खाली स्थान। अपने साथियों और शिक्षक के साथ अवलोकनों पर चर्चा कीजिए और भ्रमण के बाद पौधे उगाने के विषय में आपने जो सीखा उसे उल्लेखित कीजिए। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत में कृषि और पौधों के जीवन के विज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि तब मुख्य कार्य खेती और पशुओं का पालन पोषण था। पौधों के स्वास्थ्य, वृद्धि और रोगों के उपचार से संबंधित सारभूत ज्ञान और अनुभव को वृक्षायुर्वेद, पेड़ों के लिए आयुर्वेद नामक ग्रंथ में प्रलेखित किया गया था। वृक्षायुर्वेद के एक ही नाम से 2 ग्रंथ थे, एक सालिहोत्रा लगभग 400 ईसा पूर्व और दूसरा सुरपाल 1000 ईस्वी द्वारा लिखा गया था। सुरपाल के वृक्षायुर्वेद की ताड़ के पत्ते पर लिखी पांडुलिपि की एकमात्र मौजूदा प्रति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संरक्षित है। ये पाठ पौधों की कई प्रजातियों की खेती, जल प्रबंधन, मिट्टी संरक्षण, उर्वरक और पौधों को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों और उनके उपचार से संबंधित है। वृक्षायुर्वेद में सुरपाल ने बिल्व, बेल या स्टोन एप्पल, निग्रोध, बरगद, अश्वत्थ, अंजीर या टिग और नीम जैसे पवित्र पेड़ों के रोपण का वर्णन किया है। ये वेद कहता है कि वृक्ष लगाना मानव जीवन के अनेक लक्ष्यों में से एक को प्राप्त करना है। जलवायु परिवर्तन, मिट्टी के कटाव और बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण वृक्षायुर्वेद जैसे ग्रंथों में निहित पारंपरिक ज्ञान में नए सिरे से रुचि उत्पन्न हुई है। इस ज्ञान का उपयोग मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने, अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 12।
मुझे क्या करना है। पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया। यह एक चित्र है, इसमें पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया को समझाया गया है। एक, उपकरण औजारों एवं सामग्री की व्यवस्था। यहाँ उपकरण औजारों और सामग्री की व्यवस्था करने के तरीके समझाए गए हैं। दो, वर्मी कंपोस्ट। यहाँ छात्र छात्राओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार करना समझाया गया है। तीन, यहाँ भूमि तैयार करना, खाद डालना एवं बीज बोना समझाया गया है। चार, निराई। इस चित्र में एक छात्र और एक छात्रा निराई कर रहे हैं। पांच, बाड़ की व्यवस्था। इस चित्र में छात्र छात्राएं बाड़ लगा रहे हैं। छह, पौधों की देखभाल। इस चित्र में छात्र छात्राएं पौधों की देखभाल कर रहे हैं। सात, उपज कटाई। इस चित्र में छात्र छात्राएं उपज की कटाई के बाद खुशी मना रहे हैं। पृष्ठ संख्या 13। जैसा कि आप चित्र 1.5 में समझ सकते हैं, रसोई उद्यान में पौधों को बढ़ने में सहायता करने के लिए सावधानी पूर्वक देखभाल की आवश्यकता होती है। आइए अब उन गतिविधियों का संचालन करते हैं जो आपका रसोई उद्यान विकसित करने में सहायता करेंगी और साथ ही स्वस्थ पौधे उगाने का तरीका भी सिखाएंगी। गतिविधि 2, विद्यालय के रसोई उद्यान की योजना तैयार करना। सर्वप्रथम भूमि क्षेत्र को मापने और रसोई उद्यान के विभिन्न घटकों को तय करने की आवश्यकता है। चित्र 1.6 का अध्ययन कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की भी आवश्यकता है। नीचे दिए गए प्रश्न आपको रसोई उद्यान की योजना बनाने में सहायता करेंगे। एक, क्या आप अपने विद्यालय में उपलब्ध भूमि या गमलों या दोनों में रसोई उद्यान तैयार करने जा रहे हैं? खाली स्थान। दो, आप अपने रसोई उद्यान के क्षेत्रफल की गणना कैसे करेंगे? खाली स्थान। चित्र 1.6, रसोई उद्यान किचन गार्डन तैयार करना। यहाँ छात्र छात्राएं रसोई उद्यान तैयार कर रहे हैं। अपने रसोई उद्यान के स्थान का चयन करते समय आपको कुछ बातों पर विचार करना चाहिए, जैसे सूरज की रोशनी, जल निकासी और पौधों के मध्य दूरी, ताकि पानी देते समय आप सभी पौधों तक पहुंच सकें। पृष्ठ संख्या 14। तीन, उद्यान के लिए स्थान चुनते समय आपने किन कारकों पर विचार किया? खाली स्थान। पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व विशिष्ट तत्वों को संदर्भित करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि। पौधे इन्हें अपनी वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी से अवशोषित करते हैं। पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए जैविक उर्वरक जैसे खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद तथा अकार्बनिक उर्वरक जैसे यूरिया और सुपर फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। आप ऐसे शाक या पत्तेदार सब्जियों को उगाने पर विचार कर सकते हैं जो कम समय में तैयार हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आप धनिया, पुदीना, पालक या अन्य पत्तेदार सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि आप अपने उद्यान से उपज जल्दी प्राप्त कर सकें। ये शाक या पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होती हैं, क्योंकि ये विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत होती हैं। अब अपने रसोई उद्यान के लिए पौधों का चयन कीजिए और बुवाई या रोपण के लिए बीज या पौधे की व्यवस्था कीजिए। गतिविधि 3, वर्मी कंपोस्ट तैयार करना। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की कई विधियां हैं। ऐसी ही एक विधि का वर्णन दिया गया है। इस गतिविधि में आप सीखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। आप इंटरनेट पर अन्य तरीके भी ढूंढ सकते हैं या किसानों और अन्य विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। एक, वर्मी कंपोस्ट प्लास्टिक,
लकड़ी या किसी अन्य जल प्रतिरोधी सामग्री से बने डिब्बे में तैयार किया जाता है। कूड़ेदान को तिरपाल या पुराने मोटे कपड़े के टुकड़े से ढकना चाहिए। अतिरिक्त पानी निकालने के लिए इसके तल में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र करने चाहिए। पृष्ठ संख्या 15। 2. कंपोस्ट डिब्बे में अपशिष्ट भरा होना चाहिए, जैसे रसोई का कचरा, गिरे हुए पत्ते और उद्यान का अन्य कचरा या कोई भी जैविक कचरा। आप अपने विद्यालय में मध्याह्न भोजन से प्राप्त किसी भी अपशिष्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसे घर या पास के ढाबे या रेस्तरां से ला सकते हैं। कचरे की इन परतों को वर्मी बेड, बेडिंग मटेरियल कहा जाता है। 3. अब वर्मी बेड को नम करने के लिए पानी डालिए। ये शिक्षक के निर्देशानुसार कीजिए। 4. लाल केंचुए आइसेनिया फेटिडा को वर्मी बेड के ऊपर डाला जाना चाहिए, जिससे वो उसमें बिल बना सके। चित्र 1.7। आप खेत या नर्सरी से केंचुए प्राप्त कर सकते हैं। 5. कंपोस्ट डिब्बे में केंचुओं को रसोई अपशिष्ट पदार्थ जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, कॉफी के अवशेष, अंडे के छिलके और गैर चिकनाई वाले खाद्य अपशिष्ट खिलाने चाहिए। मांस, डेयरी या तैलीय खाद्य पदार्थ और खट्टे फल डालने से बचिए, क्योंकि वे कीटों को आकर्षित कर सकते हैं या अपशिष्ट पदार्थों में उत्पन्न कृमि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 6. क्यारी पर आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव कर उसे नम रखा जाना चाहिए, लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए। नमी बनाए रखने और कीटों को रोकने के लिए इसे ढक्कन से ढकना चाहिए। 7. जब वर्मी कंपोस्ट काला, भुरभुरा और मिट्टी जैसा हो जाए तो उसे डिब्बे के नीचे से निकाला जा सकता है, जो कि सामान्यतः कुछ ही महीनों में तैयार हो जाता है। चित्र 1.7 का। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए केंचुए। यहाँ वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए केंचुए हथेलियों में रखे हुए हैं। चित्र 1.7 ख। बचे हुए भोजन के अवशेषों का उपयोग कर तैयार किया गया वर्मी कंपोस्ट। यहाँ बचे हुए भोजन के अवशेषों का उपयोग करके तैयार किए गए वर्मी कंपोस्ट को हथेलियों में लिया गया है। पृष्ठ संख्या 16। क्या आप जानते हैं, यदि केंचुए उपलब्ध नहीं हैं, तो आप वर्मी कंपोस्टिंग से थोड़ी अलग प्रक्रिया का उपयोग करके खाद बना सकते हैं। आप इंटरनेट पर ठोस अपशिष्ट से वर्मी कंपोस्टिंग लिखकर खाद बनाने की प्रक्रिया खोज सकते हैं। प्रश्न आपके अधिगम की जांच करने में सहायता करेंगे। 1. वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपने किन सामग्रियों का उपयोग किया? खाली स्थान। 2. आपने कूड़ेदान में किस प्रकार के खाद्य अवशेष डाले? खाली स्थान। 3. समय के साथ आपने कंपोस्ट डिब्बे में क्या परिवर्तन देखे? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 17। गतिविधि 4. रोपण के लिए रसोई उद्यान तैयार करना। मिट्टी की तैयारी में किसी भी प्रकार के मलबे, कंकड़ पत्थर या अवांछित पौधों को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। ये पौधों के विकास में बाधा बन सकते हैं। इसके साथ ही इस चरण में सुनिश्चित करना है कि आपके पौधों की वृद्धि के लिए उन्हें पर्याप्त पोषण और उचित वातावरण मिले। चित्र 1.8। चित्र 1.8 रसोई उद्यान, किचन गार्डन के लिए पौधों की क्यारियां बाएं और गमले दाएं। यहां दो चित्र हैं। एक चित्र में एक व्यक्ति और दो बच्चे किचन गार्डन में काम कर रहे हैं। दूसरे चित्र में गमले और खाद रखी हुई है। बीज बोने या पौधारोपण से पहले पौधों की क्यारियों या गमलों की मिट्टी तैयार की जानी चाहिए। आपको शिक्षक के निर्देशानुसार मिट्टी में खाद मिलाना होगा। नीचे दिए गए प्रश्न अधिगम जांच करने में सहायता करेंगे। 1. आपने रोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की? खाली स्थान। 2. क्या आपने जैविक खाद का उपयोग किया? यदि हाँ, तो आपने मिट्टी में जैव खाद मिलाने के लिए
किस अनुपात का उपयोग किया? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 18। गतिविधि 5, बीज बोना और पौधे रोपना। आपने गतिविधि 2 में अपने रसोई उद्यान में उगाए जाने वाले पौधों का निर्णय पहले ही कर लिया है। बीज बोने से पूर्व बीज के पैकेट पर दिए गए निर्देशों को पढ़िए, ताकि आप रोपण की अनुशंसित गहराई, दूरी और रोपण के उचित समय को समझ सकें। आप किसानों या बागवानों माली से पिछली फसल से संरक्षित किए गए कृषि बीजों को लेकर उनका उपयोग भी कर सकते हैं। इस विषय में उनसे मार्गदर्शन अवश्य लीजिए। यदि आप पौधे रोप रहे हैं तो संबंधित विशिष्ट देखभाल निर्देशों के लिए उनके साथ मिले लेबल या टैग को पढ़िए। यदि लेबल उपलब्ध नहीं है तो उस व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए जिनसे आपने उन पौधों को प्राप्त किया है। 1. बीज बोना। नीचे दिए गए क्रम के अनुसार बीज बोइए। क. बीज बोने के लिए सुझाए गए अंतराल के अनुसार मिट्टी में छोटे छोटे छेद बनाइए। यदि आप गमलों में रसोई उद्यान बना रहे हैं तो आपके लिए ये जानना आवश्यक है, प्रत्येक गमले में लगाए जाने वाले बीज या पौधों की संख्या कुछ कारकों द्वारा तय की जाती है, जिसमें पौधे का प्रकार, गमले का आकार और पौधे की वृद्धि सम्मिलित है। चित्र 1.9, खांचों में बीज बोना। इस चित्र में एक व्यक्ति खांचों में बीज बो रहा है। ख. बीज को आपके द्वारा बनाए गए छेदों में डालें। यदि बीज बहुत छोटे हैं तो उन्हें मिट्टी की सतह पर समान रूप से छिड़किए। चित्र 1.9 का अध्ययन कीजिए। ग. अनुशंसित रोपण गहराई का पालन करते हुए बीजों को हल्के से मिट्टी से ढक दीजिए। घ. बीज और मिट्टी के बीच अच्छा संपर्क सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी को हल्के से दबाइए। पृष्ठ संख्या 19। 2. पौधारोपण। यदि आप पौधारोपण कर रहे हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन कीजिए। क. तैयार मिट्टी में गड्ढे खोदिए। गड्ढे जड़ों की लंबाई से बड़े होने चाहिए। ख. पौधों को उनके कंटेनर से सावधानी पूर्वक निकालिए। ध्यान रखिए कि जड़ों को नुकसान न पहुंचे। ग. प्रत्येक पौधे को तैयार गड्ढे में रखिए। पौधे के चारों ओर की मिट्टी का स्तर उसके मूल डिब्बे में मिट्टी के स्तर से मेल खाना चाहिए। घ. गड्ढों को धीरे से मिट्टी से भरें। पौधे को उसके स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक पौधे के आधार के चारों ओर हल्के से दबाइए। स्थाई मार्कर की सहायता से सूचक पत्र लेबल पर पौधे का नाम और बुवाई की तारीख लिखिए। ये सूचक पत्र पुराने प्लास्टिक बैग से बनाए जा सकते हैं, जिन्हें अनुपयोगी कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर पर चिपकाया जा सकता है। उद्यान की प्रत्येक पंक्ति या खंड या प्रत्येक गमले में सूचक पत्र को शुरुआत में रखिए, ताकि ये पता चल सके कि उन्हें कब लगाया गया था। इससे आप पौधों की वृद्धि पर आसानी से ध्यान रख पाएंगे। अपने अधिगम जांच के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. आपने प्रत्येक प्रकार के बीज को कितनी गहराई में बोया? आपके द्वारा एकत्र की गई जानकारी को तालिका 1.1 में लिखिए। तालिका 1.1, बीज बोने की गहराई का विवरण। क्रम संख्या। पौधे का नाम। बीज बोने की गहराई सेंटीमीटर 1, 2, 3, 4। पृष्ठ संख्या 20। 2. आपने एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच कितनी जगह छोड़ी? आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को तालिका 1.2 में लिखिए। तालिका 1.2, पौधे से पौधे के बीच का विवरण संरक्षित करना। क्रम संख्या। पौधे का नाम। पौधे से पौधे के बीच की दूरी सेंटीमीटर 1, 2, 3, 4। 3. क्या आपके द्वारा उगाए गए सभी पौधों के लिए पौधों से पौधे के बीच की दूरी समान थी? हाँ, नहीं। गतिविधि 6, पौधों की देखभाल करना।
पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्व, पानी, सूरज की रोशनी और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि वे पनप सकें। इसके साथ ही पौधे कोमल होते हैं और उन्हें जानवरों, कीटों, बीमारियों या उनके लिए प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले नुकसान से भी सुरक्षित रखना चाहिए। पौधों की सामान्य सुरक्षा में बाड़ बनाना, साथ में पौधे लगाना, साफ सफाई, निराई गुड़ाई, हवा से सुरक्षा तथा कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशकों का उपयोग सम्मिलित है। एक, बाड़ बनाना। आपको पौधों को जानवरों और उन लोगों से सुरक्षित रखना होगा जो उन पर पैर रख सकते हैं। आप अपने रसोई उद्यान के चारों ओर बाड़ बनाकर ऐसा सुनिश्चित कर सकते हैं। का, बाड़ को बांस या स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके बनाया जा सकता है। ख, उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई को मापिए जिसमें बाड़ लगाने की आवश्यकता है। ग, क्षेत्र का एक रेखा चित्र बनाइए और तय कीजिए कि बाड़ कहाँ लगाई जानी है। घ, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे बांस, पुराने पाइप या पुरानी लकड़ी की छड़ियों को डंडे के रूप में उपयोग करने के लिए एकत्र कीजिए और डंडों को बांधने एवं बाड़ बनाने के लिए मजबूत रस्सी का उपयोग कीजिए। पृष्ठ संख्या 21। नीचे दिए गए प्रश्न आपको आवश्यक सामग्री की मात्रा तय करने में सहायता करेंगे। एक, बाड़ लगाने के लिए आप कौन सी सामग्री का उपयोग करेंगे? खाली स्थान। दो, बाड़ लगाने के लिए आपको कितने डंडों और कितनी लंबी रस्सी की आवश्यकता होगी? खाली स्थान। दो, पौधों की देखभाल और रख रखाव के चरण। का, पौधों और लताओं को सहारा देने के लिए डंडे का उपयोग कीजिए। पौधों को सहारा और स्थिरता प्रदान करने के लिए डंडे का उपयोग करना चाहिए, विशेष रूप से लंबे या कमजोर तने वाले पौधों के लिए जो ऊपर से भारी हो जाते हैं और गिर सकते हैं। चित्र 1.11। टमाटर, खीरे, मटर और सेम के पौधों को सहारा देने के लिए डंडे की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको डंडों की आवश्यकता होगी जिसके लिए आप बांस, एक पतली पुरानी शाखा जो पेड़ से गिर गई हो या एक पुरानी धातु या प्लास्टिक पाइप का उपयोग कर सकते हैं। डंडे की ऊंचाई और मोटाई पौधे की लंबाई और वजन के अनुसार तय की जानी चाहिए। इसके बाद रस्सी का उपयोग करते हुए पौधे को डंडों से बांधिए। चित्र 1.11। पौधे को सहारा देना। यहाँ एक पौधे को एक डंडे के साथ सहारा देकर बांधा जा रहा है। पृष्ठ संख्या 22। ख, पौधों को पानी देना। पौधों को नियमित रूप से पानी देना आवश्यक है। ये सुनिश्चित कीजिए कि मिट्टी लगातार नम रहे लेकिन उसमें जल भराव न हो, क्योंकि अधिक पानी देना पौधों के लिए हानिकारक होता है। तय कीजिए कि पौधों को पानी कैसे दिया जाएगा। आप पानी देने के लिए एक मग और बाल्टी, पानी देने का कैन या पाइप आदि का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 1.12 का अध्ययन करें। विशेषकर सूखे के दौरान पौधों को पर्याप्त पानी मिले ये सुनिश्चित करने के लिए एक समय सारणी विकसित कीजिए। नए पौधों को अधिक बार पानी देने की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के कारण पौधों में पानी की कमी को कम करने के लिए उन्हें प्रातःकाल या दोपहर के बाद पानी देना चाहिए। चित्र 1.12। नए बोए गए पौधों की क्यारियों में पानी देना। इस पृष्ठ पर एक चित्र बाईं ओर है, उसमें कुछ व्यक्ति पाइप से पौधों की क्यारियों में पानी दे रहे हैं। पौधों को पानी देने से पहले नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि इससे आपको पौधों को आवश्यकता के अनुसार पानी देने में सहायता मिलेगी। एक, आपको कैसे पता चलता है कि पौधे को पानी की आवश्यकता है? खाली स्थान।
2. आपको अपने पौधों को कितनी बार पानी देने की आवश्यकता है? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 23। 3. पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा समय क्या है? खाली स्थान। 4. कौन से कारक पानी देने की मात्रा और आवृत्ति को प्रभावित करते हैं? खाली स्थान। ग, पानी देने के बाद मल्चिंग तकनीक का प्रयोग करें, नमी बनाए रखने, खरपतवारों को रोकने और मिट्टी का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए अपने पौधों के चारों ओर पुआल, लकड़ी की कतरन या कटे हुए पत्ते की परत लगाइए। घ, उद्यान की निगरानी और कीटों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना। जैविक कीटनाशक तैयार करने के लिए नीम का तेल, लहसुन, मिर्च और साबुन जैसे अवयवों का उपयोग कीजिए। आवश्यकतानुसार प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग कीजिए, साथ ही निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन कीजिए ताकि पौधों के लिए लाभकारी कीटों, पक्षियों और जानवरों को न्यूनतम क्षति पहुंचे। क्या आप जानते हैं, नीम आधारित कीटनाशक एक जैविक कीटनाशक है जिसका उपयोग कृषि फसलों में कैटरपिलर, टिड्डे, सफेद मक्खी और एफिड्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आप आगे दिए गए चरणों का पालन करके जैविक कीटनाशक बना सकते हैं। 1. 500 ग्राम नीम की पत्तियां लीजिए। यदि संभव हो तो आप स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ से किसी अन्य कड़वे पौधे की पत्तियां लेने के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 24। पत्तियों को अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। पत्तियों को तोड़ते समय आपको अच्छी सुगंध का अनुभव होगा। 2. तोड़ी हुई नीम की पत्तियों को 5 लीटर पानी में मिला लीजिए। 3. मिश्रण को एक जेरी कैन या बड़े आकार की बोतल में डालिए और लगभग 14 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। 4. एक छलनी का उपयोग करके तरल से अनावश्यक ठोस पदार्थों को अलग कीजिए। 5. आप इस कीटनाशक को स्प्रे बोतल में भरकर पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। अंगा, खरपतवार हटाना। नियमित रूप से खरपतवारों की जांच कीजिए और जैसे ही वे दिखाई दें उन्हें हटा दीजिए। चित्र 1.13। यदि आपके पास निराई गुड़ाई के लिए हैंड कल्टीवेटर है तो उसका उपयोग करना अच्छा है। यदि हैंड कल्टीवेटर उपलब्ध नहीं है तो आप अपने शिक्षक से अन्य विकल्प पूछ सकते हैं। चित्र 1.13। हैंड कल्टीवेटर का उपयोग करके पौधे की क्यारी से खरपतवार निकालना। इस पृष्ठ पर बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें 2 छात्राएं हैंड कल्टीवेटर का उपयोग करके पौधे की क्यारी से खरपतवार निकाल रही हैं। अपने उद्यान को सजाइए। आपके उद्यान में उगने वाले पौधे पंक्तिबद्ध, उचित लेआउट और सजावट के साथ सुंदर दिखने चाहिए। उन तरीकों के बारे में सोचिए जिनसे आप अपने उद्यान को सुंदर और व्यवस्थित बना सकते हैं, साथ ही उन तरीकों पर कार्य कर सकते हैं। अपने रसोई उद्यान को सजाने के लिए आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। 1. फूलों की क्यारियों या गमलों को सुंदर दिखाने के लिए पत्थरों का प्रयोग कीजिए। आप इन पत्थरों को आकर्षक रंगों से रंग सकते हैं। 2. सजावटी वस्तुएं बनाइए जिन्हें उद्यान से बाहर रखा जा सके, जैसे चित्रित मिट्टी के बर्तन, पत्थरों पर बनाई गई पेंटिंग या विद्यालय के आसपास रखी पुरानी वस्तुओं का उपयोग करके मूर्तियां आदि बनाइए। 3. उद्यान को पक्षियों से सुरक्षित रखने के लिए आप बिजू का भी बना सकते हैं। श्री नेकचंद द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके रॉक गार्डन नामक एक सुंदर उद्यान बनाया गया था। आप इससे प्रेरणा लेकर भी अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 25। गतिविधि 7, पौधों की वृद्धि का अवलोकन।
पौधों की वृद्धि का अवलोकन उनके विकास और आवश्यकताओं को समझने में सहायक हो सकता है। अपने रसोई उद्यान में पौधों की वृद्धि पर ध्यान रखिए। चित्र 1.14। पौधों की लंबाई में परिवर्तन का निरीक्षण कीजिए और अवलोकन को लिखिए, जैसे पत्तियों के रंग में परिवर्तन, फूलों की उपस्थिति और कीटों द्वारा किया गया नुकसान आदि। आप एक डायरी रख सकते हैं जिसमें आप अपने अवलोकन को अंकित कर सकते हैं। अपने अवलोकन को लिखने के लिए तालिका 1.3 का उपयोग कीजिए। चित्र 1.14। पौधों की वृद्धि का अवलोकन। इस पृष्ठ पर दाहिनी ओर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कुछ छात्र छात्राएं पौधों की वृद्धि का अवलोकन कर रहे हैं। तालिका 1.3। रसोई उद्यान में उगाए गए पौधों का अवलोकन। अवलोकन तिथि। अवलोकन: अंकुरों के उभरने, पौधों की लंबाई, कीटों, पत्तियों के रंग में परिवर्तन, फूल आदि का विवरण। सप्ताह 1 तिथि। सप्ताह 2 तिथि। सप्ताह 3 तिथि। पृष्ठ संख्या 26। अपने रसोई उद्यान की प्रगति का विवरण कैमरे द्वारा अलग अलग कोणों, एंगल से चित्र लेकर या रेखा चित्र बनाएं। पृष्ठ संख्या 26 पर रेखा चित्र बनाइए या चित्रों को चिपकाइए। सप्ताह 1 माह 1। सप्ताह 2 माह 2। पृष्ठ संख्या 27। फसल की कटाई। उपभोग के लिए तैयार होने पर फसल की कटाई कीजिए। चित्र 1.15 और उसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। आपको अपने शिक्षक से फसल की कटाई की विधि के विषय में अवश्य पूछना चाहिए। उदाहरण के लिए, साग और पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए बारंबार कटाई, मल्टीपल कटिंग का उपयोग कीजिए। बाहर की पत्तियों की कटाई कीजिए जबकि अंदर की पत्तियों को बढ़ने दीजिए। गाजर और मूली जैसी जड़ वाली सब्जियों के लिए पौधे की सतह के आसपास की मिट्टी को नरम रखिए और उन्हें हाथ या फावड़े की सहायता से बाहर निकालिए। टमाटर, बैंगन। चित्र 1.16 का अध्ययन कीजिए और काली मिर्च जैसी फसल को बेल से काटने के लिए बागवानी में उपयोग की जाने वाली कैंची का इस्तेमाल कीजिए। ऐसी फसलों को बेल से अलग करने के लिए काटिए, साथ ही छोटे तनों को लगे रहने दीजिए। किसी भी मलबे, बाहरी पदार्थ या क्षतिग्रस्त उत्पाद को हटा दीजिए ताकि केवल उच्च गुणवत्ता वाली उपज ही शेष रहे। चित्र 1.16। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में बैंगन का पौधा एक गमले में लगा हुआ है। दूसरे चित्र में उगाए गए बैंगन रखे हैं। चित्र 1.15। अपने श्रम की उपज का आनंद लीजिए। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में एक बालक अपने श्रम की उपज का आनंद ले रहा है। पृष्ठ संख्या 28। इस पृष्ठ पर नीचे दिए गए क्रम के अनुसार प्रश्न आपके अधिगम की जांच करने में सहायता करेंगे। 1. आपने कौन सी फसल काटी? खाली स्थान। ख खाली स्थान। ग खाली स्थान। 2. आपको कैसे पता चला कि फसल कटाई के लिए तैयार थी? क खाली स्थान। ख खाली स्थान। ग खाली स्थान। 3. पौधों की कटाई के लिए आपने किन उपकरणों का उपयोग किया? खाली स्थान। 4. कटाई के दौरान पौधों को नुकसान से बचाने के लिए आपने क्या सावधानियां बरतीं? खाली स्थान। 5. रसोई उद्यान से कटाई के बाद आपने उपज का क्या किया? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 29। गतिविधि 9। सब्जी मंडी का भ्रमण। स्थानीय सब्जी बाजार में जाइए, वहां सब्जियों और फलों का निरीक्षण कीजिए। विभिन्न सब्जियों और फलों के मूल्यों को लिखिए। अपने अवलोकन के आधार पर आपके द्वारा उगाई गई सब्जियों की मूल्य सूची तैयार कीजिए। तालिका 1.4 का अध्ययन कीजिए।
तालिका 1.4 बाजार में सब्जी उपज की मूल्य सूची। सब्जी का नाम, कीमत,

कीजिए कि उपज के लिए मूल्य का निर्धारण करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 30। तालिका 1.5 में जानकारी लिखने के बाद मूल्य की गणना कैसे की जाए ये जानने के लिए यहाँ एक सरल विधि प्रस्तुत की गई है। तालिका 1.5 रसोई उद्यान की उपज का अनुमानित मूल्य। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें 5 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में आपको ये लिखना है कि आपने क्या उगाया। दूसरे कॉलम में आपको ये लिखना है कि बीज पौधे और अन्य सामग्री पर कितना पैसा खर्च किया। तीसरे कॉलम में ये लिखना है कि आपने कितनी मात्रा में फसल उपज की कटाई संख्या या वजन के अनुसार की है। चौथे कॉलम में ये लिखना है कि उपज का बाजार मूल्य क्या है। पांचवें कॉलम में ये लिखना है कि आपको अपनी फसल उपज के लिए कितना पैसा मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि पौधे बिना मिट्टी के भी उगाए जा सकते हैं। मनी प्लांट की एक टहनी लीजिए और इसे पानी से भरी एक पुरानी बोतल में रखिए। बोतल को तेज लेकिन अप्रत्यक्ष धूप अर्थात अधिक तापमान वाले स्थान पर रखिए। प्रत्येक सप्ताह पानी बदलना न भूलिए। ये करने के बाद देखिए कि मनी प्लांट की टहनी में क्या क्या परिवर्तन होता है। पृष्ठ संख्या 31। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कुशल रसोई उद्यान। आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करके एक कुशल रसोई उद्यान का निर्माण कर सकते हैं। AI पौधों की पहचान करने, पौधों को पानी देने, पौधों की वृद्धि को अंकित करने, कीटों की पहचान करने आदि में आपकी सहायता करता है। AI का उपयोग करके योजना बनाना और विकसित करना। 1. उपयुक्त सब्जियों और शाख की खोज कीजिए और जानिए कि उन्हें कब लगाया जाना चाहिए। मोबाइल फोन पर AI एप्स आपके स्थान के अनुसार पौधों का सुझाव देते हैं। 2. सूरज की रोशनी और पौधों के मध्य की दूरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उद्यान क्यारियों के लेआउट या गमलों के स्थान की योजना बनाइए। कुछ पौधे सुव्यवस्थित ढंग से विकसित होते हैं जब वे अन्य पौधों से घिरे होते हैं। इसके विपरीत कुछ पौधों को विकसित होने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। रसोई उद्यान बनाना। 1. उभरी हुई क्यारियों या गमलों को उचित मात्रा में मिट्टी से भरिए और सुनिश्चित कीजिए कि अतिरिक्त पानी जमा न हो। 2. आवश्यक दूरी और गहराई के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए बीज या पौधे रोपिए। 3. सुगमता पूर्वक पहचान के लिए प्रत्येक पौधे पर उसका नाम और रोपण तिथि लिखिए। आप सूचक पत्र लेबल का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और सूचक पत्र पर पौधे का चित्र भी चिपका सकते हैं। कुशल देखभाल और निरीक्षण। उपयुक्त उद्यान प्रबंधन ऐप या उद्यान अभिलेख ऐप ढूंढिए। पौधों का नियमित रूप से निरीक्षण कीजिए। पौधों की प्रगति का अवलोकन करने, कीटों या बीमारियों जैसे संभावित मुद्दों की पहचान करने के लिए ऐप का उपयोग कीजिए। 1. किसी भी अपरिचित पौधे को पहचानने के लिए छवि पहचान इमेज रिकॉग्निशन ऐप का उपयोग कीजिए। ये खरपतवार या पिछले मौसम के बचे हुए बीजों से उगने वाले पौधे भी हो सकते हैं। 2. AI ऐप सुझावों और अतिरिक्त इंटरनेट खोजों के आधार पर पानी देने की सही समय सारणी, खाद डालने और कीटों का शीघ्र पता लगाने आदि की जानकारी प्राप्त कर उन्हें क्रियान्वित कीजिए। 3. पौधों की वृद्धि और अन्य संबंधित पहलुओं का अवलोकन कीजिए और अपनी रुचियों के अनुसार दस्तावेज तैयार कीजिए। इस तरह आप अपने अधिगम भ्रमण का विवरण रख सकते हैं। जियो टैगिंग, जो विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे फोटो वीडियो वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट में भौगोलिक जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया है, आपके रसोई उद्यान के लिए भी उपयोगी हो सकती है। आप अपने उद्यान को जियो टैग करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो गमलों में या किसी अन्य रूप में हो। पृष्ठ संख्या 32। मैंने दूसरों से क्या सीखा।
गतिविधि कार्य के दौरान

0: तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातें लिखिए जो आपने दूसरों से सीखी हैं। वे रसोई उद्यान बनाने, पौधों की देखभाल करने या दूसरों के साथ काम करने से संबंधित भी हो सकती हैं। अंकित करने के लिए खाली स्थान दिया गया है। मैंने क्या कार्य किया और इसमें कितना समय लगा, ये समझना महत्वपूर्ण है कि किसी गतिविधि को पूरा करने में कितना समय लगता है। प्रत्येक गतिविधि को क्रियान्वित करने में आपने कितना समय व्यतीत किया, इसका आकलन अवश्य कीजिए। इसे नीचे दी गई समय रेखा पर चिन्हित कीजिए। यदि आपने पुस्तिका में सुझाई गई गतिविधियों में अधिक समय लिया है तो संख्या और अतिरिक्त समय जोड़िए। गतिविधि, समयावधि, कालांश। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें 9 गतिविधियों के लिए क्रम संख्या दी गई है और उन गतिविधियों को करने में कितना समय लगा उसको अंकित करने के लिए खाली स्थान दिया गया है। मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ। 1. अपने घर पर एक गमला उद्यान की रचना कीजिए। अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए कि इसके लिए आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी ताकि आप योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकें। 2. आपके द्वारा उगाए गए पौधों के वैज्ञानिक नाम पता कीजिए। 3. अपने रसोई उद्यान को जियो टैग कीजिए और इसमें देशांतर और अक्षांश निर्देशांक सम्मिलित कीजिए। पृष्ठ संख्या 33। सोचिए और जवाब दीजिए। 1. आपको क्या करने में आनंद आया। 2. गतिविधियों के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 3. आप अगली बार क्या नया या अलग करेंगे। 4. वे कौन सी स्थितियां थीं जिनसे आपके पौधों की वृद्धि में सहायता प्राप्त हुई। यदि आपके पौधे अच्छी प्रकार से विकसित नहीं हुए तो आपको अगली बार क्या क्या करना चाहिए। 5. परियोजना से संबंधित कौन सी नौकरियां हैं। अपने आसपास देखिए, लोगों से बात कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। आपके द्वारा क्रियान्वित की गई गतिविधियों से संबंधित नौकरियों के कुछ उदाहरण हैं: किसान, माली, कृषि वैज्ञानिक, कृषि उपकरण मैकेनिक, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर मैकेनिक। इसके साथ ही अध्याय 1 समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। वाचन स्वर मुइनुल हुसैन। निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

इस त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए आप और हम सब मिलकर एक वचन ये भी देते हैं कि हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, महिलाओं का सम्मान करें। तब होगा असल मायने में रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी मौसम मौसम लवली मौसम। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि मानसून का मतलब बारिश नहीं होता। हर मानसून में बारिश भी नहीं होती। हर मानसून के पीछे कुदरत की कई क्रियाएं काम करती हैं। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी मौसम मौसम लवली मौसम।

0: सृष्टि, ओ सृष्टि।
1: जी मम्मी।
0: ये नल तो बंद कर ना, पानी बह रहा है कब से।
1: अच्छा
0: और सुन, वो मानव को तो आवाज लगा, सुबह से न जाने क्या कर रहा है छत पे।
1: अरे करेगा क्या मम्मी, छत पर आज बहुत सारी पतंगे आ रही हैं, बस उन्हें इकट्ठा कर रहा होगा।
0: ओ, तो आज भी उसका लवली लवली मौसम है।
1: हाँ मम्मी, सुबह से उसने 5 पतंगे जो इकट्ठी कर ली हैं।
2: अरे भाई किसके लिए आज मौसम लवली लवली है, अरे हमें तो सुबह से आज चाय भी नहीं मिली है।
0: मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ।
2: अरे वसुधा, जैसा कि तुमने कहा, मैंने बगीचे का सारा कबाड़ आज साफ कर दिया है। पिछले हफ्ते तो सुबह सुबह ही इतनी गर्मी हो गई थी कि कुछ भी काम करने का मन नहीं किया, तो अब चाय।
0: अभी लाती हूँ चाय।
2: हाँ।
1: ओ, तो मानव की तरह आप भी आज खुश हैं।
2: अरे भाई मौसम ही ऐसा है बेटा।
1: जी, लवली लवली।
3: मानव आज तो मानव बड़ा खुश है। हाँ। क्या बात है मानव, ये 5 पतंगों की करामात है।
2: नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये मौसम की करामात है। अब मैं बगीचे की सफाई करने की 1 महीने से सोच रहा था, पर मूड नहीं बन रहा था, और आज सुबह सुबह ही उठकर मैंने देखा मौसम इतना बढ़िया है तो सारा बगीचा भी साफ कर दिया।
0: अरे वाह, कीजिए आपकी चाय।
2: थैंक यू, यू आर सो स्वीट वसुधा।
0: हाय आप।
2: अरे वाह वाह वाह, आज देखो आपकी मम्मी भी बहुत खुश लग रही है। कल कैसे गुस्सा हो रही थी।
3: अरे पापा, कल आपने देखा ही होगा कि कितनी गर्मी थी, ऊपर से बिजली नहीं। ऐसी गर्मी में आपको चूल्हे के सामने खड़ा होकर खाना बनाना पड़े तो क्या होगा।
2: हाँ वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये मौसम हमारे तन मन भावनाओं सबको प्रेरित करता है।
1: आखिर ये मौसम है क्या भला।
0: पापा के मूड की तरह, वो जब अच्छा होता है तो कई दिनों तक अच्छा रहता है, और खराब हो जाए तो कई दिनों तक खराब रहता है।
1: तब तो मम्मी का मूड मौसम है और पापा का जलवायु।
2: क्यों बती रहे हो भाई। वैसे एक तरीके से तुम बच्चे ठीक ही कह रहे हो, जब मौसम बदलता है तो लोगों का मूड बदलता ही है, पर मौसम इतिहास भी बदल देता है।
3: वो कैसे?
2: बच्चों, भारत का इतिहास गवाह है कि शेरशाह ने हुमायूं को हराने में मौसम की भी भरपूर मदद ली थी।
0: और जानते हो बच्चों, हुमायूं ने शेरशाह के बिहार के विद्रोह को दबाने के लिए आक्रमण किया, तो शेरशाह बंगाल की ओर भागता रहा, उसके पीछे हुमायूं भी बंगाल आ गया, तब वहाँ वर्षा हो रही थी।
2: हाँ, और गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आने से दिल्ली जाने के सभी रास्ते बंद हो गए।
3: अच्छा।
2: पर हुमायूं वहीं डेरा जमाए रहा, और तब शेरशाह अपनी मान से निकला और उसने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं को हार का मुंह देखना पड़ा, खुद भी अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाया। अरे सब जानते हैं कि वो गंगा में कूद पड़ा और एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई।
1: पापा, मैंने सुना है भोपाल में 2 और 3 दिसंबर को एक कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव से 2,500 व्यक्तियों की मौत हो गई थी।
2: हाँ बेटा।
1: कुछ विशेषज्ञों का विचार है, उस रात अगर वर्षा होती या तेज हवाएं चलती तो जहरीली गैस या तो पानी में घुल जाती या हवा उसे दूर ले जाती, जिससे उसके प्रभाव अधिक क्षेत्र पर तो होते परंतु इतने घातक नहीं होते।
2: बिल्कुल।
1: और ठंडे मौसम में तो कोहरे के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है ना पापा।
2: हाँ मानव, पता है एक बार 1952 में लंदन को कोहरे की मोटी मोटी परतों ने ढक लिया और 4 दिन तक ढके रहा।
3: अच्छा।
2: हाँ, और जब कोहरा छटा तो 4,000 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी थी।
1: पापा, आप तो बुरे मौसम की बातें करके मुझे भी डरा रहे हैं। आज तो मौसम कितना लवली लवली है।
0: मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये मौसम बदले इससे पहले पिकनिक पर निकल चलो।
2: एक मिनट, पहले पूछ तो लो मुझसे।
1: बोलो ना पापा।
2: तो चलो ना भाई।
4: देखो सूर्य प्रकाश, नदी के इस किनारे को हमने पिछले 3 साल में कैसे एक पिकनिक स्थल में बदल दिया है।
2: भाई सुंदर तो बहुत लग रहा है भैया, तुमने सब कुछ कमाल कर दिया भैया।
1: नमस्ते
4: नमस्ते बच्चों, नमस्ते।
2: बच्चों, ये है मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर अनुराग।
4: एक बार फिर नमस्ते बच्चों। आओ बच्चों, देखो यहाँ हमने छोटी छोटी कॉटेजेस बना दी है।
2: बड़ी सुंदर है।
4: चलो पहले तुम्हें दिखाऊं कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं।
3: मैंने सामान गाड़ी से उतार कर कॉटेज में रख दिया है।
2: ठीक है ठीक है ठीक है। और अरे सुनो, अरे वो पकौड़े तो देते जाओ जो तुम घर से बनवा के लाए हो।
5: वो तो मैंने हजम कर दिए
2: रास्ते में।
1: और हजम करके ये कागज और एल्यूमिनियम की पन्नी और खाली पानी की बोतल भी यही फेंक दी।
0: मानव कब अपने आप को बदलोगे?
5: मम्मी
0: देखो यहाँ सब जगह कितनी साफ है, हर जगह हरी भरी है, पास में नदी बह रही है। अगर इस जगह पर सभी तुम्हारी तरह कूड़ा फेंकने लगे तो शाम तक ये सुंदर जगह कूड़ेदान बन जाएगी।
4: अरे भाभी जी मानव को डांटिए नहीं। देखो माना बेटा, वहाँ सामने दो कूड़ेदान रखे हैं।
3: तो उठाओ ये कूड़ा और डाल दो नीले वाले में ये प्लास्टिक की बोतल और अल्मोनियम की पन्नी और कागज हरे वाले में। चल जा फटाफट। अच्छा।
6: मानव मैं आ गया।
7: अरे मानव आज यहाँ की सफाई का काम तुमने ले लिया है क्या?
5: अरे गौरव तू यहाँ? लगता है विवेक भैया ने तुझे पहले ही फोन कर दिया होगा।
7: हाँ हाँ विवेक भैया ने मुझे पहले ही फोन कर दिया था।
5: गौरव देखो ये मानव अपनी आदतें बदलता ही नहीं है।
7: सृष्टि दीदी मानव हमारा बहुत अच्छा दोस्त है पर कभी कभी भूल कर बैठता है।
3: कभी कभी
7: पर मानव मैंने सुना है कि आज तुमने 5 पतंगे लूटी है। That's great.
3: गौरव कुछ भी कहो पतंग लूटने का तो मजा ही कुछ और है।
7: और ऐसी खुली हवा में पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और है। भैया यहाँ जगह भी कितनी खुली खुली है ना।
5: सच गौरव पतंग उड़ाने में मजा आएगा, इसीलिए मैं सारी पतंगे और डोर भी ले आया हूँ।
4: बच्चों पतंग बाद में उड़ाना, पहले कुछ नाश्ता कर लो।
5: नाश्ता?
4: और चाय नाश्ते के बाद मैं तुम्हें यहाँ के वातावरण से अवगत करा दूंगा।
2: वैसे अनुराग यहाँ तो पूरा वातावरण ही बदल गया है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। ओ, कई पक्षी भी दिख रहे हैं।
4: हाँ भाई हम इसे एक जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम इस स्थान को एक ऐसे पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं जहाँ लोगों को प्रकृति का नजारा देखने को तो मिले, साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण को भी समझ सके।
3: डॉक्टर अंकल मैंने सुना है आपके यहाँ मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने के यंत्र भी हैं।
4: ठीक सुना तुमने विवेक, ये सभी उपकरण यहाँ लगे हैं। मौसम विभाग के कर्मचारी भी यहाँ दिन में एक बार आते हैं।
2: तब तो तुम्हें भी मौसम विज्ञान की काफी जानकारी हो गई होगी।
4: हाँ भाई मैं भी एक शौकिया मौसम वैज्ञानिक हूँ। यहाँ मैं भी आंकड़े इकट्ठे करता हूँ और उनके आधार पर आने वाले मौसम का अनुमान लगाने की कोशिश करता हूँ।
5: यहाँ भी मौसम की बात। अच्छा अंकल मौसम अच्छा कब और कैसे होता है ये तो मुझे पता चल गया, पर खराब कब होता है?
4: बेटे मौसम कई तरह के होते हैं, जैसे ठंडा या गर्म, सूखा या नम, सुहाना या तूफानी वगैरह वगैरह। परंतु हर मौसम बनता है विभिन्न कारकों की आपसी जटिल क्रियाओं से,
5: और जिनमें शामिल है हवा की गति, दबाव, तापमान, बादलों की उपस्थिति, नमी, हवा।
0: बस बस बस मानव करने लगा परेशान तू अपने अंकल को।
4: अरे नहीं नहीं भाभी मेरा तो ये शौक है और मुझे ऐसे सवालों का जवाब देना अच्छा लगता है।
1: अगर मैं कहूँ कि वायुमंडल की स्थिति ही मौसम का निर्माण करती है तो क्या ये सही होगा भैया?
3: सृष्टि बिल्कुल ठीक होगा। मौसम से संबंधित सभी क्रियाएं तो वायुमंडल की निचली परत यानी क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 10 किलोमीटर है और जो ध्रुवों पर और पतली हो जाती है।
4: ठीक कहा तुमने विवेक। अगर देखा जाए तो मौसम के निर्माण में 3 मुख्य कारक हैं।
5: कौन कौन से?
4: सूर्य, हवा और पानी।
5: अंकल कोई ऐसा तरीका बताओ कि मौसम जैसा आज है वैसा हमेशा बना रहे, यानी लवली लवली।
4: लवली लवली यानी?
5: देखो अंकल आज सबका मूड कितना अच्छा है और सब खुश भी है। पापा मुझे पढ़ने को भी नहीं कह रहे हैं और आज मम्मी भी घर का काम छोड़कर हमारे साथ आ गई है। क्यों हुआ ना मौसम लवली लवली?
2: बेटा बेटा कहीं मौसम एक जैसा नहीं रह सकता, ये कब बदल जाए इसका भी पता नहीं होता। किताब लाओ साथ में।
5: पापा।
7: हाँ अंकल तभी एक मौसम वैज्ञानिक ने कहा है तितली के अर्जेंटीना में पंख फड़फड़ाने से ध्रुवों पर हिमखंड गिरने लगते हैं।
4: बेटे इस उदाहरण से वो ये कहना चाहते हैं कि मौसम के निर्धारण की प्रक्रिया कितनी जटिल है, एक छोटी सी घटना कालांतर में किस तरह मौसम को बड़े रूप में प्रभावित करेगी कहा नहीं जा सकता।
3: यानी अभी मौसम के बनने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए।
4: कुछ ऐसा ही समझो।
5: पर अंकल पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। मौसम बनता और बिगड़ता कैसे है?
4: अरे बेटे, पृथ्वी पर मौसम परिणाम है तापमानों के अंतर का।
5: तापमान में अंतर?
4: हाँ बच्चों, और तापमान में अंतर इस बात पर निर्भर है कि पृथ्वी पर किसी स्थान को सूर्य से प्रति यूनिट कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है।
1: तब तो भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों को सबसे ज्यादा ऊष्मा मिलती होगी।
4: लेकिन वहाँ भी सारे क्षेत्र एक जैसे गर्म नहीं होते। भूमध्य रेखा पर सारे क्षेत्र में भूमि नहीं है, वहाँ समुद्र भी है।
3: और समुद्र थल की अपेक्षा कम गर्म होते हैं।
4: हाँ।
3: पर अधिक ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य की रोशनी समुद्र में 600 मीटर तक जा सकती है, पर थल पर केवल कुछ मीटर तक ही।
1: पर थल तो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म,
5: और पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी ठंडा।
4: तभी जितना तापमानों में अंतर थल पर होता है समुद्र में नहीं।
2: हाँ भाई, साइबेरिया में तापमान -46 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, परंतु समुद्र में कहीं भी इतना कम तापमान नहीं होता।
5: यानी समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए हमेशा मौसम लवली लवली।
1: अरे वाह पापा, हमें भी अपना घर समुद्र में ही बना लेना चाहिए, तब आपका मूड भी हमेशा ठीक रहेगा।
4: सूर्य प्रकाश
3: बहुत बढ़िया मानो, बहुत बढ़िया। अच्छा अंकल, अगर मैं कहूँ कि मौसम को सुहाना और खराब करने में हवा का बड़ा हाथ है, तो क्या ये सही होगा?
4: हाँ, क्योंकि वैसे तो मौसम के निर्माण से जुड़े कई कारण अभी भी ठीक ठीक समझे नहीं गए हैं, परंतु हवा एक मुख्य कारक है।
3: अच्छा,
7: तो क्या स्थायी हवाएं जैसे ट्रेडविंड और अस्थायी व स्थानीय हवाओं का मौसम से गहरा संबंध है?
4: बिल्कुल है बेटे, परंतु इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर जो वायुमंडल के विभिन्न संचरण है उन्हें समझना होगा।
5: लेकिन अगर सबका पेट खाली होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए।
2: आ गया है, आ गया। अच्छा जाओ, अच्छा जाओ, अपनी मम्मी का हाथ बटवाओ, जाओ जाओ, वो तैयारी कराओ, जाओ जल्दी।
4: सचमुच मजा आ गया खाने का,
5: पर हमें तो पतंग उड़ाने का मजा ही नहीं आया।
4: क्यों?
7: अरे मानव, पहले हवाओं के बारे में समझ तो लो, फिर उसी हिसाब से पतंग उड़ाना।
4: भाई ऐसी हवाएं जो हमारे मौसम को प्रभावित करती हैं, उन्हें हम तीन वर्गों में रख सकते हैं।
5: कौन कौन सी अंकल?
4: भाई ऐसी हवाएं जिनका संचार पूरे पृथ्वी ग्रह को प्रभावित करता है।
7: कहीं आप ट्रेडविंड यानी व्यापारिक हवाओं की बात तो नहीं कर रहे हैं?
4: हाँ गौरव बेटे, तुमने पृथ्वी का नक्शा तो देखा होगा, है ना? उस पर एक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है,
5: उसे भूमध्य रेखा कहते हैं।
4: हाँ।
5: इस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।
3: बिल्कुल ठीक मानव, और ये क्षेत्र हमेशा गर्म और नम रहते हैं, और यहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है।
4: ठीक कहा तुमने विवेक, पर क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है?
7: अंकल मैं बताऊँ? क्योंकि अंकल यहाँ पर थल और जल दोनों ज्यादा है और दोनों ही गर्म हो जाते हैं।
4: बिल्कुल ठीक, और इस कारण इस क्षेत्र पर जो वायु जल और थल के संपर्क में आती है वो भी गर्म हो जाती है,
5: और गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है,
4: और ऊपर उठने से वो पुनः ठंडी हो जाती है, और उसमें उपस्थित वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है, और इस क्षेत्र में लगभग पूरे साल वर्षा होती रहती है और मौसम नम बना रहता है।
7: तब तो अंकल नीचे यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता होगा।
1: और इस कम दबाव वाले क्षेत्र को भरने के लिए ठंडी हवा उच्च दबाव क्षेत्र से यहाँ पहुँचती होगी, क्योंकि हवा अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर गति करती है,
4: और इसी को हम हवा यानी विंड कहते हैं, और ये पवन यानी कि हवा विश्वव्यापी भी हो सकती है, और जैसे व्यापारिक पवनें और स्थानीय भी, जैसे जल और थल समीर, है ना?
7: यानी मौसम के मिजाज का पता करना है तो वायुमंडल के दाब का पता कर लो।
4: हाँ बेटे, और जो हवा जिस दिशा से आ रही है उसी के अनुसार मौसम ठंडा गर्म शुष्क या नम होगा।
2: अरे तभी तो हवाओं को उनकी आने की दिशाओं से ही जाना जाता है, जैसे पूर्वा या पछुआ।
1: हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी भी मुझे बताती थी कि पूर्वा हवाएं ठंडी और शुष्क होती हैं, और पछवा गर्म तो होती है पर वो शुष्क भी हो सकती हैं और नम भी हो सकती हैं। तब तो अंकल हमें यदि ये पता हो कि पृथ्वी पर कहाँ कहाँ उच्च या निम्न दाब क्षेत्र हैं, तो हम वहाँ के मौसम के बारे में कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं।
4: बिल्कुल,
5: पर उच्च और निम्न दाब क्षेत्र से मौसम का क्या संबंध?
3: अरे भाई माना, मौसम का मतलब वायुमंडल में हलचल, और हलचल तो तभी होगी जब किसी स्थान पर वायु दाब में अंतर हो।
1: हाँ विवेक भैया, दाब में अंतर होने पर हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी।
4: बच्चों, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों से हवाएं ऊपर उठकर ध्रुवों की ओर यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की तरफ बहेंगी, और ध्रुवों पर जहाँ उच्च दाब है वहाँ से हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ बहेंगी।
2: परंतु ऐसा होता नहीं है।
5: क्यों?
2: क्योंकि भूमध्य रेखा पर हर जगह सूर्य की ऊर्जा अलग अलग मिलती है, और फिर कहीं पानी है तो कहीं जमीन, जो सूर्य की ऊष्मा अलग अलग मात्रा में अवशोषित करते हैं। इसके अलावा रात और दिन आदि कई कारक हैं, और इन सबसे एक और बड़ा कारक है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जो हवाओं पर कोरियोलिस प्रभाव पैदा करता है, जिससे हवाएं अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता बदल लेती हैं, यानी उसकी दिशाओं में परिवर्तन आ जाता है।
1: तो क्या वे गर्म हवाएं ध्रुवों तक नहीं पहुंचती?
4: पहुंची तो है बेटे, परंतु बड़ी जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद।
5: जटिल प्रक्रिया मतलब?
2: देखो भाई, भूमध्य रेखा पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है, और 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के पास कुछ हवा नीचे उतर जाती है। यहाँ उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है, परंतु इसकी सारी नमी पहले ही समाप्त हो जाती है, इसलिए इन कम दबाव के क्षेत्रों में मौसम तो शांत होता है परंतु वर्षा कम या बिल्कुल नहीं होती।
5: शायद तभी अमेरिका का दक्षिण पश्चिम इलाका तथा अफ्रीका का सहारा क्षेत्र कम दबाव क्षेत्र में आता है।
3: मानव, इस बेल्ट को जो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है, उसे अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। इस अक्षांश पर शेष हवाएं दो भागों में बंट जाती हैं, एक भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है और दूसरी ध्रुवों की ओर।
1: जो हवा अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर वापस आती है, उन्हें व्यापारी हवाएं यानी ट्रेड विंड्स कहते हैं।
3: बिल्कुल ठीक सुनते। इन हवाओं को व्यापारी हवाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यूरोप के जहाज इन हवाओं के सहारे यात्रा किया करते थे।
4: हाँ बेटे, व्यापारी हवाएं भूमध्य रेखा पर पहुँचने पर एक संवहन चक्र पूरा कर लेती है। इस भूमध्य रेखिक संवहन चक्र को मौसम वैज्ञानिक जॉर्ज हेडले के सम्मान में हेडले चक्र कहा जाता है।
1: पापा, भूमध्य रेखा से क्या सभी हवाएं अश्व अक्षांश क्षेत्र तक सीमित हो जाती हैं?
2: नहीं बेटा नहीं, भूमध्य रेखा से कुछ हवाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक पहुंच जाती हैं, और भूमध्य रेखा से आई इन हवाओं को पश्चिमी पवन या प्रतिकूल व्यापारी पवन कहा जाता है।
3: और प्रतिकूल व्यापारी हवा मतलब इनकी दिशा व्यापारी हवा के विपरीत होती है।
1: शायद इन हवाओं का कोई व्यापार करने नहीं आया होगा।
4: व्यापार न सही, लेकिन इनकी गति काफी तेज और स्थायी हवाओं में सबसे अधिक होती है।
1: तेज तो अंकल हमारा मानव भी है, लेकिन वो गति में नहीं खाने में तेज है।
5: हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे भूख भी लगाई है।
4: अच्छा। लो बेटा, तुम सेब खाओ।
3: अंकल, अंकल सेब तो हम भी खाएंगे।
4: अच्छा बच्चों, तुम सब सेब लो, ये लो, ये लो।
2: मैं बच गया भाई।
1: अंकल, मैंने एक पत्रिका में हवाओं के कुछ विचित्र नाम 50-40 सही से याद नहीं आ रहा, पढ़े तो थे।
3: सृष्टि, मैं बताता हूँ, कहीं तुमने गरजती 40, भयानक 50 और चीखते 60 तो नहीं पढ़े थे?
1: हाँ हाँ भैया, मैंने यही नाम पढ़े थे।
5: लेकिन भैया, ये कैसे विचित्र नाम है?
3: मानव घबराओ नहीं, मैं बताता हूँ। जब पश्चिमी पवन तीव्र गति से बहती हुई 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बनी रहती है, तो इसे गरजती 40 या रोरिंग 40 कहते हैं।
7: लेकिन हवाओं के अन्य नाम कैसे पड़े?
3: पापा आप ही बता दो।
2: अरे बेटा, जब ये पवन 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है तो इसे भयानक 50, फ्यूरियस 50, और 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच होने पर इसे चीखते 60, स्क्रीमिंग 60 कहा जाता है।
1: मुझे तो पता ही नहीं था कि पवन चीखती भी है।
5: अगर आपने जल और थल समीर को स्थायी पवन बताया था ना?
4: हाँ मानव, जल और थल के ऊष्मा धारिता गुण में भिन्नता के कारण दिन में पवन जल से थल की ओर, तथा रात में थल से जल की तरफ चलती है।
7: इसका मतलब है कि दिन में गर्मी से जल के ऊपर दाब की मात्रा थल के दाब से अधिक होती है
1: और रात में थल के ऊपर अधिक दाब होता है और जल के ऊपर कम, है ना अंकल?
4: हाँ बेटी, ऐसा ही होता है।
5: लेकिन अंकल, पर्वतीय घाटियों में तो दिन और रात दोनों समय मौसम सुहाना होता है।
4: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों में सुहाने मौसम के लिए हमें आरोही और अवरोही हवाओं को धन्यवाद देना चाहिए जो वहाँ के मौसम को खुशनुमा बनाए रखती है।
6: आरोही और अवरोही हवाएं?
3: हाँ।
5: विवेक भैया, कहीं ये गणित के आरोही और अवरोही सिद्धांत की बात तो नहीं है?
3: मानव, तू फिर से घबराने लगा।
5: बताओ ना भैया।
3: अरे नहीं, ये आरोही अवरोही तो स्थानीय पवन है।
4: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों से पवन का पर्वत की ओर अर्थात ऊपर बहती पवन आरोही पवन कहलाती है। इस प्रकार गर्म होती वायु ऊपर उठती जाती है।
1: अच्छा, इसीलिए दिन में घाटियों में ठंडक रहती है
2: और रात में पर्वत की चोटियाँ घाटियों की तुलना में तेजी से ठंडी होती हैं। इसीलिए रात में चोटी से ढाल की ओर बहने वाली पवन ठंडी होती है और इन्हें अवरोही पवन कहा जाता है।
4: बच्चों।
1: अंकल, अब बाहर जाकर पिकनिक का मजा भी लिया जाए।
4: हाँ,
5: और बाहर जाकर देखे कि कौन सी हवा चल रही है।
4: हाँ बच्चों, अरे हम तो बताना ही भूल गए बातों बातों में कि बाहर हमने टेंट लगा रखा है।
7: अरे मानव, चल बाहर चलकर लवली लवली मौसम का आनंद।
4: हाँ, हाँ, चलो चलो चलो बच्चों।
6: क्यों डॉक्टर साहब, बच्चों ने ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया?
5: मम्मी, हमने कोई शरारत नहीं की है।
4: भाई, बच्चों की मौसम संबंधी जिज्ञासा देखकर तो मेरा मन गदगद हो गया।
1: मम्मी, हम तो लवली लवली मौसम में बाहर बातें करने आए हैं।
6: अच्छा अच्छा, बैठो बच्चों, जरा हम भी तो सुने तुम्हारी लवली लवली बातें।
7: अरे मानव, ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है।
5: अरे हाँ,
1: मानव चाहे एरोप्लेन में बैठा ना हो लेकिन उसे उड़ते हुए तो देख ही सकता है।
5: अच्छा,
7: अरे बैठना क्या, हो सकता है बड़ा होकर मानव पायलट बने। एरोप्लेन तो क्या, जेट विमान भी उड़ाए।
5: अंकल, जेट विमान के बारे में सुनकर मुझे जेट प्रवाह का नाम याद आ गया।
4: बच्चों, धरती की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई पर करीब 160 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली घुमावदार पवन जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम कहलाती है।
1: ये पवन किस गोलार्ध में चलती है?
3: सृष्टि, जेट प्रवाह दोनों गोलार्ध में ही होती है।
2: हाँ, लेकिन बेटा, ये प्रत्येक गोलार्ध के 20 डिग्री से 50 डिग्री पर स्थित उष्ण क्षेत्र और 30 डिग्री से 70 डिग्री के ध्रुवीय क्षेत्रों दोनों में बहती है।
7: अच्छा, तो ये जेट प्रवाह वही है ना जिनका गर्मी के दिनों में हिमालय के ऊपर की ओर सरक जाना हमारे देश में मॉनसून का संकेत माना जाता है।
2: बिल्कुल ठीक, मॉनसून भी एक तरह की स्थानीय हवा ही है जिसकी उत्पत्ति महासागरों और महाद्वीपों के ताप में अंतर से होती है।
3: पर ये कोई साधारण घटना नहीं है, मॉनसून तो मौसम की अनेक घटनाओं से संबंधित है।
2: हाँ, पृथ्वी का घूर्णन, पर्वत और अन्य अवरोधों से पवनों की गति मंद हो जाने से मॉनसून प्रभावित होता है।
5: लेकिन ये मॉनसून समय का पक्का नहीं है।
2: हा?
5: कभी 10-20 दिन पहले ही आ जाता है और कभी इतनी बाद में आता है।
7: अरे मानव, मॉनसून तो अप्रैल जून से ही बनने लगता है जब उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समीप गर्मी पड़ने लगती है।
1: अच्छा, जब हमारी परीक्षाएं खत्म होती हैं, तब ये मॉनसून अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है।
5: परीक्षाएं? भाई, मुझे तो बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है। वो देखो, बाहर बादल छा रहे हैं और हवा भी चल रही है, पर मैं तो बाहर जा रहा हूँ।
1: अरे मानव, ये जेब में क्या लेकर जा रहे हैं बाहर, बिस्किट है क्या?
5: अरे दीदी, बिस्किट नहीं है, बिस्किट का खाली पैकेट है, ताकि बाहर जाते समय इसे कूड़ेदान में डाल दूं।
2: अरे वाह वाह वाह वाह, लगता है मानव समझदार हो गया। अब मानव कूड़े को इधर उधर न फेंकने का महत्व समझ गया है।
4: भाई, ये तो एक दिन मेरे साथ रहने का नतीजा है। भाई, अच्छे आदमी के साथ रहेगा तो अच्छे गुण भी सीखेगा।
2: डॉक्टर साहब, अरे हमें तो लगता है कि आप में अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का गुण आ गया है।
4: भाई कुछ भी कहो, पर मेरे लिए आज की पिकनिक मजेदार रही। क्यों बच्चों, सही कहा ना मैंने?
6: हाँ अंकल, आज की पिकनिक बड़ी मजेदार रही।
8: भाई साहब, आपने पिकनिक को मनोरंजक और शिक्षाप्रद बनाया है
1: और मानव को लवली लवली मौसम के साथ क्लीन क्लीन बॉय भी।

0: धरती मेरी धरती, अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी सुन रहे थे, मौसम मौसम लवली मौसम।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी,
0: जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

इस त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए आप और हम सब मिलकर एक वचन ये भी देते हैं कि हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, महिलाओं का सम्मान करें। तब होगा असल मायने में रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
1: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
0: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
1: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
0: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
2: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

इस त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए आप और हम सब मिलकर एक वचन ये भी देते हैं कि हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, महिलाओं का सम्मान करें। तब होगा असल मायने में रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Namaskar, main Amitabh Bachchan bol raha hu. Maine TV ko bahut kareeb se dekha hai aur haraya bhi hai. Sahi suna aapne. बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो. पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया. इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको. इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज. और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री. मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए. इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा.
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है, इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी

0: आँख, नाल और त्वचा का भी ध्यान। कितनी बार, कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी, ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ, ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना। सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान। देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
1: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
2: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की, मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में।

0: मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है, जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है, जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है, जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है, उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है, जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरो साधन 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: ओरिजिनल क्रेडिट्स एल्बम हीरा पन्ना, सिंगर किशोर कुमार, लता मंगेशकर, लिरिसिस्ट आनंद बख्शी, म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन और इसी गाने को रिक्रिएट किया गया है। सो लेट्स एंजॉय इट। रिक्रिएशन क्रेडिट्स आर्टिस्ट दीप शिखा रैना, म्यूजिक डायरेक्टर अनुराग अभिषेक। चलिए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना है, सिर्फ और सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर। पन्ना

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 एफएम और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शार

0: यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM सुनो शारदा 90.8 FM
1: इसे समझो ना।

इस त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए आप और हम सब मिलकर एक वचन ये भी देते हैं कि हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, महिलाओं का सम्मान करें। तब होगा असल मायने में रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. You're listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी

इस त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए आप और हम सब मिलकर एक वचन ये भी देते हैं कि हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी बहन का सम्मान चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज में खुशहाली लाएं, महिलाओं का सम्मान करें। तब होगा असल मायने में रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
1: खाने में एक चम्मच घी या तेल है जरूरी,
2: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
1: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
2: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
3: माँ जी, मुझे टीबी है।
2: टीबी और छुपा कर रखा?
3: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
2: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
1: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित
0: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
1: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग।
0: तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: शुरुआती 2 साल है बच्चे की जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाएं हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं, जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
2: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: Hi, I'm Ranvijay. You are listening to Suno Sharda at 90.8 FM.